इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सीताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर और इट हैपेंस में कुछ मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ हमारे और आपके कुछ मॉर्निंग वाले जज्बात भी बयां हो रहे हैं। वैसे अब बात करूंगी आपसे रिलेशनशिप में आने वाले तीसरे इंसान की, या एक तीसरा पर्सन, एक थर्ड पर्सन। यू नो, रिश्ते में खतरा तब नहीं होता है जब आप दोनों बैठकर सामने लड़ाई करते हैं। असली खतरा तब होता है जब कोई चुपचाप आपके बीच में घुस आए, बिना आवाज किए, बिना परमिशन लिए और बिना ये एहसास दिलाए कि वो आपको और आपके रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है। आज के टाइम में हर कपल के बीच में देखा जाए तो एक इनविजिबल तीसरा आदमी मौजूद है और वो है सोशल मीडिया। अब देखिए, ये तीसरा इंसान ना तो बोलता है, न जस्टिफाई करता है और ना ही माफी मांगता है। पर रिश्ते का सबसे बड़ा नुकसान इसी की वजह से होता है। जब आपका मूड ऑफ होता है तो ये आपको वही कंटेंट दिखाता है जिससे आपका गुस्सा बढ़ता है। जब आप अपने पार्टनर से हर्ट होते हैं तो ये आपको ऐसी रील्स और स्टोरी दिखाता है कि इन्हें देखकर आपको लगता है सी वही गलती तुम्हारा पार्टनर भी तो कर रहा है। ये जो है आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। और सोशल मीडिया के जरिए आपको हर तरह से अपना रिलेशनशिप खराब लगने लगता है। तो हाँ, ये तीसरा बंदा जो है ये कहता कुछ नहीं है, लेकिन आपको आपके रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश करता है। तो ख्याल रखिए, जरा इस थर्ड पर्सन से बचकर रहिए और चलिए एंजॉय कीजिए हमारे साथ अभी इस अगले ट्रैक को। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

आजकल दोस्ती करना बड़ा आसान हो गया है, पर रियल कनेक्शन मिलना उतना ही मुश्किल हो गया है। आपके फोन में हजार कॉन्टेक्ट्स होंगे, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, पर जब बात आती है किसी एक इंसान की जो आपको सच में समझे, तो वहाँ आप अकेला फील करते हैं। लोग बहुत हैं, पर अपने बहुत कम हैं। आप रोज लोगों से बात करते हैं, हंसते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, पर अंदर से आपको पता होता है कि ये सब सरफेस लेवल पर है, ये कनेक्शन रियल है ही नहीं, ये बस एक टाइम पास है। आपका दिल समझने वाला या आपको समझने वाला कोई है ही नहीं, है ना? और इसीलिए ये जो फेक वर्ड है, इससे बच के रहने की बहुत जरूरत है। एक और ट्रैक इसी बात पर मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए ठापन सुरीजो प्रिस्वानी 1701 एम पर।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

बात करूंगी आज इट हैपेंस में दोस्तों बॉयज की या फिर मेल्स की। यू नो, इस दुनिया में आप किसी भी देश में रहते हो, लड़के दो दुनियाओं के बीच में लड़के हमेशा दो पार्ट्स में बटे रहते हैं, या ये कहें दो दुनिया में बटे रहते हैं। पहली दुनिया जो उसे साफ और तेज आवाज में सिखाती है मजबूत बनो, ये दुनिया उसे बार बार याद दिलाती है कि उसे रोना नहीं है, डरना नहीं है और अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है। और दूसरी दुनिया होती है जो बहुत शांत और बहुत ही डीप फीलिंग उसको देती है। ये उसकी अपनी आवाज होती है जो धीरे से उससे पूछती है, लेकिन क्यों? ये वही आवाज है जो उसकी हर दर्द, हर उलझन और हर डर को महसूस करती है, उसे बताती है कि वो भी इंसान है और उसे भी फील करने का, महसूस करने का अधिकार है। लेकिन इस सवाल का जवाब उसे शायद कभी मिलता ही नहीं है। कोई उसके पास बैठकर उसे ये नहीं समझाता कि मजबूत होने का असली मतलब क्या होता है। उसके बजाय उसे बार बार बातें सिखाई जाती हैं, रो मत, डरो मत, टूटो मत, और धीरे धीरे यही बातें उसके अंदर बसने लगती हैं और वो इन्हें सच मान लेता है। अब उसके लिए मजबूत होना एक एहसास नहीं होता, बल्कि एक रोल प्ले बन जाता है, एक ऐसा चेहरा जिसे उसे हमेशा खुश रखना होता है, नेचुरल दिखाना होता है, उस सब कुछ संभालने का उसे ये एक्टिंग करनी होती है, जबकि कई बार उससे अपनी सिचुएशन, अपनी ही हालत हैंडल नहीं हो रही है। सो इसीलिए बहुत जरूरी है लड़कों को अपने बच्चों को ये समझाना कि उन्हें भी रोने का, अपनी बात को कहने का, अगर कभी डर रहे हैं तो डरने का हक है, पूरा हक है, क्योंकि लड़का या लड़की होने से इमोशंस चेंज नहीं होते। एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रसवानी।

देखिए, लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ मिल रहा होता है। फिर चाहे वो अटेंशन हो, टाइम हो, सपोर्ट हो, या बस अपने बोर टाइम को आपके साथ पास करना हो, जैसे ही उन्हें आपसे बेटर ऑप्शन मिलता है, वो धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। ये लोग जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए आपसे कनेक्ट होते हैं, किसी मतलब से आपके लिए कनेक्ट होते हैं, इनके साथ आपके रिश्ते भी बहुत लंबे नहीं चलते हैं। आइए इन्हीं लोगों के नाम फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये अगला ट्रैक। हमारे साथ सुनते रहिए, इट हैपेंस आपके अपने रेडियो किस्वानी 1701 एम पर।

दोस्तों, आज के रिश्तों का सबसे कड़वा सच ये है कि जहाँ प्यार की मात्रा उसकी कीमत से तय की जाती है। और देखिए ना, कितना अजीब है कि ज्यादा प्यार करने वाले की कीमत कम आकी जाती है। जो दिल खोल कर देता है वही सबसे हल्के में लिया जाता है, जो हर हाल में साथ खड़ा रहता है वही धीरे धीरे आदत बन जाता है। और आदत के लिए सबसे बेकार और बुरी बात यह होती है कि उसकी मौजूदगी तब तक महसूस नहीं होती जब तक वो दूर ना हो जाए। ज्यादा प्यार करने वाला इंसान रिश्ते में डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ आता है। वो सामने वाले को जगह देता है, समय देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। वो हर छोटी से छोटी बात में भी अच्छाई ढूंढ लेता है, हर गलती को चलो कोई बात नहीं कहकर टाल देता है। उसे लगता है कि प्यार का मतलब यही है, समझना, सहना और निभाना। लेकिन वहीं से इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। वो सिर्फ समझता रहता है और सामने वाला उसे कम आंकता रहता है। कभी सोचेगा कि आपके रिश्ते में भी यही तो नहीं हो रहा है ना? सही बात। आप में से कई लोगों ने इस चीज को फील भी किया होगा और कई लोग दूसरे के साथ भी ऐसा कर रहे होंगे। तो सोचिए जरा, दोनों ही तरफ से ही कहीं आपके रिश्ते में ये तो नहीं हो रहा है? आइए एक और ट्रैक्स प्ले करती हूँ आपके लिए। मेरे साथ एंजॉय करते रहिए ठाकुर आपके अपने रेडियो ब्रिस्पानी 107.01 एफएम पर।

दोस्तों ये था जिट हैपेंस पर एक और सताक्षी का साथ। आई होप कि ये मजा आया आपको और आपने भी इस सफर को, इस साथ को मेरे साथ एंजॉय किया। सो कुछ और जज्बात, कुछ और बातें और कुछ और मॉर्निंग टॉक्स के साथ, मॉर्निंग ट्रैक्स के साथ आपसे हम जरूर मिलेंगे कल। आज के सफर से अब लूंगी आपसे विदा क्योंकि अब दिन शुरू हो रहा है भाई। तो आप इस वक्त को, इस दिन को एंजॉय कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
2: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इज ब्यूटिफुल इनिशिएटिव।

0: पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com।
2: फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
9: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। ब्रीज सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ, डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
6: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
7: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
7: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
7: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
7: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
8: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go.

0: ऐ मेरी हमरत मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

अगर इश्क हल्का कर दे तो वही सही इश्क है, जो बोझ बन जाए सीने पर वो बस आदत की रेख है।

हम सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, मिड वीक आ गया है। ये वीक का आधा हिस्सा आप कंप्लीट कर चुके हैं, बस आधा बचा हुआ है। सो वो भी आप मजे से अच्छे से पूरी मोटिवेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। और फिर तो आपको पता ही है फिर क्या होगा, वो आपको पता ही है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो किससे छुपा है। ऑफकोर्स फ्राइडे आ जाएगा, वीकेंड आ जाएगा, मस्ती होगी, रिजुविनेट करेंगे।

लेकिन उससे पहले भर भर के मेहनत कीजिए, भर भर के काम कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। पर ये नहीं है कि सिर्फ काम ही करते रहिए, मतलब थोड़ा रुक कर सांस लेने की जरूरत भी है। जी हाँ, सो इसी के साथ सांस लेने की बात कर दी गई है, तो जरा सांस ही ले लेते हैं। जी हाँ, और आपको पता है इससे मेरा मतलब क्या है। इनकेस आपको नहीं पता, आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, एक ऐसा रिचुअल जो हम अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में करते हैं ताकि हम हेल्दी रहें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से। और ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप भी कोई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, या आपको स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या ही चल रहा है इस दुनिया में, व्हाई व्हाई, तो आप ये कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। यानी कि डीप ब्रेथ एक्सरसाइज, यानी कि लंबी गहरी सांसों का वो मैजिक जो है वो चल जाता है हमेशा। तो आइए सबसे पहले वही करेंगे। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ बिना देर किए शुरू करेंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम की शुरुआत होगी एक बढ़िया से गाने के साथ। बढ़िया सा गाना जो है वो है सबसे पहले ठुमकेश्वरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपके प्रोग्राम की शुरुआत जो है, और आपकी शुरुआत कोई भी जो है, वो बहुत ही मज़ेदार हो। सो ये गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जिया दोस्तों, इसके साथ बाय गॉड तेरी सेवा करेंगे वो मेरी बिल्लो रानी। वेल, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब ऐसे ही वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद होता है ऐसा या नहीं, वेल आप लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो जरा मौसम का रुख करें, यानी कि क्या कह रहा है वेदर। जी हाँ, सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 22.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 20.7 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, बीच बीच में बारिश के चांसेस भी हैं, 30% चांसेस, और यानी कि 30% एरिया में आज बारिश जो है वो हुई है या होने वाली है। और इनफैक्ट मुझे 5 बजे और 6 बजे के बीच भी कुछ इलाकों में बारिश होती हुई नजर आ रही है। सो अगेन, अपने पास अगर आपके पास छाता होगा तो बेटर होगा, क्योंकि क्या पता जहां पर आप जा रहे हो वहां पर बारिश हो जाए। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एयर क्वालिटी भी है एकदम फेयर, और रात के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 14 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आप देख पाएंगे। जी हाँ, कल के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। वहीं अगर बात की जाए कल की यानी कि थर्सडे की एंड फ्राइडे की, तो 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर थर्सडे को रहेगा विद नो चांसेस ऑफ बारिश सो फार। मतलब पूरी तरह से मुझे आसमान क्लियर दिख रहा है, सूरज चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर फ्राइडे की बात की जाए तो तब भी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी आप देखेंगे, यानी कि 25 के बाद 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और नो चांसेस ऑफ बारिश दैट आई कैन सी हियर। जी हाँ, मतलब कोई बारिश के चांसेस नहीं है, अच्छे से आप जो है वो बाहर निकल पाएंगे और आपको बारिश में जो चीजें चाहिए होती हैं उसकी भी जरूरत नहीं होगी। मतलब नो छाता, नो नथिंग, यू कैन लिटरली गो आउटसाइड एंड एंजॉय द वेदर। जी हाँ, ये है मौसम का हाल आज का और अगले 2 दिन का। इसी के साथ यहां पर जरा गड्डी लेके निकलने का वक्त हो गया है, और मैं निकला गड्डी लेके, क्योंकि मेरा तो काम ही है गड्डी लेके निकलना। आप लोग अगर सवार होना चाहते हो मेरी गड्डी में तो आ जाइए, क्योंकि यहां पर मैं निकला गड्डी लेके।

जी हाँ दोस्तों, अब ये गाना जो है वो बहुत ही खास है। सो इस गाने के दो वर्जन अभी तक बने हैं, एक जो पुराना है जिसको सुनकर आपको शत्रुघ्न सिन्हा की याद आएगी, और एक ही है जिसको सुनकर आपको ऑफकोर्स अजय देवगन की याद आएगी। सो आप मुझे बताइए कौन सा वाला ज्यादा बढ़िया है। वेल ऑफकोर्स द ओजी इज द बढ़िया वन, राइट? आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो दोस्तों, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, और एक डॉक्टर पूछता है अपने पेशेंट से कि आर यू टेकिंग योर मेडिकेशंस लाइक आई सेड, आई टोल्ड यू टू टेक वाइटामिन B12, राइट? एंड द पेशेंट सेज, so doc, I've been taking 2 vitamin B6 tablets since I ran out of vitamin B12. जी हाँ, अगर आपने नहीं सुना तो ध्यान से सुनिए। So doctor कहता है कि are you taking your medications like I said? I told you to take vitamin B12 tablets, right? So patient सामने से कहता है कि so doc, I've been taking 2 vitamin B6 tablets since I ran out of vitamin B12. भाई अब ये इसमें patient की गलती थोड़ी है, भाई बेचारे ने सोचा कि vitamin B12 अगर मेरे को लेनी है और वो खत्म हो गई है तो 2 vitamin B6 ले लूंगा तो वही तो वो प्लस होके vitamin B12 बन जाएगी। बट बेचारे को ये नहीं पता था कि वो जो मैथ करने की कोशिश कर रहा है, जिसे बचपन से सिखाया गया है, वो यहाँ पर मैथ नहीं हो रहा है, वो मैथ इज नॉट मैथिंग हियर। बेचारा डॉक्टर सोच रहा है कि क्या बेटा, मैंने तुम्हें B12 लेने के लिए कहा था, तुम B6 ले रहे हो और वो भी 2 टैबलेट्स। तो बेचारा पेशेंट कह रहा है कि हाँ डॉक्टर, अब मैं क्या करूं, मेरे पास B12 खत्म हो गई थी, मैंने सोचा 2 B6 ले लूंगा तो भी तो बराबर ही हो जाएगा हिसाब किताब। जी हाँ, मुझे समझ नहीं आता कौन ये चीजें बनाता है, बट जो भी बनाता है, आई थिंक यू आर द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਆਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ।
3: ਥੈਂਕਸ ਟਨ ਵੀਰੇ, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji no on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
5: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो है सुपर एलनीनो। जी हाँ, सुपर एलनीनो भी इसमें भागीदार है और कुछ मैन मेड क्राइसिस हैं जो कि इसमें भागीदार है। एंड ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस। जी हाँ, आप लोग बोलोगे फूड क्राइसिस, निव्या आर यू श्योर फूड क्राइसिस? या आई एम वेरी श्योर फूड क्राइसिस। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट, ध्यान से सुनिए। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको पता लग ही गया है कि कैसे ये जो सारी की सारी वॉर सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई है। ये फिर से हमें उस मैट्रिक्स में फंसाने की कोशिश हो रही है जिससे कहीं ना कहीं ह्यूमंस जो है वो निकल रहे थे। और जब बड़े बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स को लगता है कि ओ, हमने तो इनके लिए एक मैट्रिक्स क्रिएट किया था और ये इस मैट्रिक्स से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, नाउ हाउ कैन वी डू इट अगेन? सो वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। जी हाँ, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। लाइक कैसे अभी थोड़े दिन पहले ये बात जो है वो आ रही थी कि अमेरिका ने जानबूझ के ये एनर्जी क्राइसिस जो है वो क्रिएट किए। नाउ आप खुद सोचिए कि अमेरिका ने वेनेजुएला से अपने ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो पक्के कर लिए। मतलब उन्होंने पक्का कर लिया कि दुनिया में कहीं भी क्राइसिस आए ऑयल के, लेकिन अमेरिका में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उठा के वहां पर सरकार को लिटरली ब्लैकमेल करके ये कह दिया कि आप हमारे साथ बिजनेस करो, आपको भी फायदा होगा, हमारे को भी फायदा होगा. जी हाँ. नाउ दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस ऑयल टू अदर कंट्रीज, दे वॉन्ट टू सेंड ऑयल टू अदर कंट्रीज. नाउ देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट द थिंग इज कि उन्होंने वो चीज की और उसके बाद उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया. नाउ एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें समझना होगा कि अगर अमेरिका कितना भी नाइव हो, कितना भी नाइव हो, क्या उसने कभी ये नहीं सोचा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या दूसरी जगहें जो उसके आजू बाजू लगती हैं उनको ब्लॉक कर सकता है? जी हाँ, ऑफकोर्स एनी कंट्री कुड हैव बीन थिंक अबाउट इट. जी हाँ. सो यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये एनर्जी क्राइसिस जो है वो क्रिएट किए गए. ऑफकोर्स दे वॉन्टेड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड दूसरी चीज लोगों को मैट्रिक्स में फंसाना. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो रही है और सबसे खतरनाक चीज ये हो रही है कि नॉट ओनली वी आर सफरिंग एंड यू नो सीइंग एनर्जी क्राइसिस, बट इट विल लीड टू फूड क्राइसिस. जी हाँ. नाउ खाना अगर कोई कंट्री उगा भी रही है तो आप बहुत सारी जगहों से उसे ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हो. क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मेन रास्तों को रोक दिया गया है, खासकर ईरान के साथ हूतियों की वजह से. जी हाँ, हूतियों ने बाबल मंडप को रोक दिया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया, और बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेड जो प्लेसेस थे, जो ट्रेड जो मार्ग थे, उनको बंद कर दिया गया. सिर्फ और सिर्फ इससे एनर्जी क्राइसिस नहीं आएंगे, बहुत ही बुरे हाल से इससे सब कुछ रुक जाएगा. नाउ रशिया यूक्रेन एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं. जी हाँ, वो दोनों कंट्रीज ही बहुत ज्यादा गैस और ऑयल जो है वो देते हैं, खासकर रशिया. सो ऐसे में रशिया की रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया गया, ऑल्दो रशिया ने उस चीज को खुद इन्वाइट किया है. बट इफ वी टॉक अबाउट अदर कंट्रीज लाइक जो सऊदी कंट्रीज हैं, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो व्यापार नहीं कर पा रही है, वो एनर्जी जो है वो बाहर नहीं भेज पा रही है. रशिया यूक्रेन एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने एक दूसरे की रिफाइनरीज को खत्म कर दिया. तो फिर ऑयल गैस आएगा कहां से? दूसरी चीज, नॉट ओनली ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स कहां से आएंगे, विच इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वॉन्ट ग्रो फूड यू हैव टू हैव फर्टिलाइजर्स, अदरवाइज हाउ विल यू प्रिजर्व योर प्रोडक्शन, योर प्रोड्यूस? सो ऐसे में ये लीड करेगी ऑफकोर्स फूड क्राइसिस की तरफ. जी हाँ, सुपर एलनीनो दूसरी वजह. अब ये दूसरी वजह क्या है, वी आर गोना टॉक अबाउट इट, लेकिन पहले हम आपको एक और गाना सुनाने वाले हैं.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बात हो रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, और वो इम्पोर्टेंट चीज वही है जो आप सोच रहे हो. वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी क्राइसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी क्राइसिस दैट कैन लीड टू फूड क्राइसिस इन कमिंग फ्यूचर. जी हाँ, नाउ जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिका के हों, फिर चाहे वो दूसरी कंट्रीज के हों. इनफैक्ट जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी कहा है कि कैसे ये जो सप्लाई चेन जो है इसमें जो बाधा आई है इसकी वजह से फूड क्राइसिस भी पैदा हो सकती है, क्योंकि अपेरेंटली देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि ट्रेड पर निर्भर करती हैं. मतलब फ्यूल और एनर्जी इज वन थिंग, बट उसके बाद व्यापार जो है, फूड जो कि दूसरी कंट्रीज से आता है, अगर कोई कंट्री जो है वो इम्पोर्ट करती है दूसरी चीज, दूसरी कंट्रीज से खाना, जी हाँ, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स एंड बहुत सारी चीजें जो कि अपेरेंटली एंड अल्टीमेटली काम करते हैं हमारी प्रोडक्शन के लिए, जो हमारा खाना है उसको प्रोड्यूस करने के लिए. जी हाँ, और ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैन मेड है, अगर ये ठीक हो जाए तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो पड़ सकता है अच्छे वे में, लेकिन ये ठीक होने में नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो कंट्रीज के विवाद हैं ये सुलझने में नहीं आ रहे, और जिसकी वजह से ये जो महंगाई का झटका हमें लगा है वो बहुत ही ज्यादा लगा है, बहुत ही ज्यादा लगा है. जी हाँ, आप देख ही सकते हैं फ्यूल कॉस्ट जो है वो बढ़ती ही जा रही है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती ही जा रही है. ऑल्दो जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज है उसकी वजह से उसको फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एनर्जी रिसोर्सेज, बट अपेरेंटली ये जो फ्यूल जो है वो क्राइसिस है, जो एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सुपर एलनीनो, क्योंकि ये डाटा और स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमें दिखाते हैं, जो कि बड़ी बड़ी अथॉरिटीज से आए हैं, कि कैसे सुपर एलनीनो जो है वो बहुत सारे लोगों की डेथ की वजह बन सकता है आने वाले टाइम में. जी हाँ, सुपर एलनीनो की वजह से जो वेदर है वो पूरी तरह से अलग थलग जो है वो दिख रहा है. जहां पर नहीं ज्यादा ठंड होती थी वहां ज्यादा ठंड हो रही है, जहां पर नहीं ज्यादा बारिश होती थी वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और इसी की वजह से वो जो पूरा का पूरा जो खाना उगाने का जो हमारा सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं है. एंड यू नो व्हाट, अल्टीमेटली हम कितनी भी तरक्की कर लें, कितनी भी इंडस्ट्रीज लगा लें, ये कर लें वो कर लें, खाना बहुत जरूरी है. खाना ही खा सकते हैं हम, पानी ही पी सकते हैं हम, सो वी नीड टू थिंक अबाउट सम थिंग्स जो कि बहुत ही अच्छे से हमारे लिए काम कर सके. एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ लैंड, मैं कहती हूँ कि अपना प्रोड्यूस कीजिए आप खाना जितना हो सकता है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द कमिंग टाइम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है. ये सारी की सारी चीजें जो क्रिएट की जा रही है, कुछ नेचुरल है लेकिन कुछ मैन मेड है, और ये चीजें अल्टीमेटली हमारे खाने पर असर डाल सकती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत होगा. बाकी सारी चीजें फिर भी मैनेज की जा सकती है, लेकिन खाना इंसान की जरूरत है, पानी इंसान की जरूरत है, और अगर वो छेड़छाड़ होती है उससे तो फिर गड़बड़ हो सकती है. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
5: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: And aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi, this is Deepika Padukone. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, main hoon Tulsi Kumar. And aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan. And aap sun rahe hain Radio Briswani.
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
14: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
15: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
14: अच्छा, वो क्या?
15: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
15: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ. दोस्तों, क्या आप एलियंस में बिलीव करते हैं? जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि हाँ हाँ करते हैं. बहुत पहले हमें कहो ना प्यार है हमने देखा था, जी हाँ, और उसके बाद हमने क्रिश देखी थी, जी हाँ, और फिर उसके बाद हमने कोई मिल गया देखी थी. बेसिकली हमने बहुत सारी मूवीज देखी, नॉट कहो ना प्यार बट कोई मिल गया और उसके बाद क्रिश. सो बेसिकली बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ बताया. फिर हमने इंटरस्टेलर देखी, फिर हमने द मार्शियन देखी. बेसिकली बहुत सारी मूवीज जो हमें यकीन दिलाती हैं कि हमारे आजू बाजू एलियंस रहते हैं. जी हाँ, अब एलियंस रहते हैं ये सिर्फ हमें मूवीज ने नहीं जो है वो विश्वास दिलाने की कोशिश की है, बल्कि ट्रंप गवर्नमेंट ने भी ये कोशिश की है. तो ट्रंप गवर्नमेंट ने बताया था कि कैसे वो बताने वाले हैं उन फाइल्स के बारे में, उन फाइल्स को रिलीज कर रहे हैं. इनफैक्ट वो अलग अलग जो है वो ग्रुप्स में उन फाइल्स को रिलीज कर रहे हैं जिसमें एलियन एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया गया है दुनिया भर में. जी हाँ, नाउ द दिलचस्प बात ये है कि हमें कुछ दिन पहले ही एक प्लैनेट से सिग्नल्स मिले हैं, रेडियो सिग्नल्स। जी हाँ, और ये माना जा रहा है कि ये एलियन सिग्नल्स हैं। मतलब एक ऐसा प्लैनेट जो धरती से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 64 लाइट ईयर्स अवे है, 64 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, जो कि आप लोग बोलोगे कि कितना ज्यादा है निव्या शर्मा, इसको तुम पास कैसे बोल रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये पास है, क्योंकि ऐसे तो 64 मिलियन लाइट ईयर्स जो है वो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन स्पेस की भाषा में अगर इसे देखें तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और एक ऐसा प्लैनेट है जहां से हमें रेडियो सिग्नल्स मिल रहे हैं, एलियन सिग्नल्स मिल रहे हैं। और अब आप लोग बोलोगे अच्छा फिर क्या हुआ? वेल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेलीस्कोप जो है साउथ अफ्रीका में है, उसने इसको पकड़ा है, और उसके बाद जब लोगों ने और साइंटिस्ट ने इसे इंटरप्रेट करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि ये सिग्नल आ रहे हैं एक ऐसे प्लैनेट से जो कि 64 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है धरती से। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज, और क्या सच में ये एलियन सिग्नल है? वी आर गोना टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर, लेकिन पहले हम आपको सुनाने वाले हैं एक और जबरदस्त सा गाना जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपको लगने वाला है।

जी दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की एक टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी ने एक सिग्नल पकड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि ये कुछ दिन पहले ही एक सिग्नल पकड़ा है, लेकिन ये सिर्फ इकलौता सिग्नल नहीं है जो उन्हें मिला है, इससे पहले भी 2025 में उन्हें ये सिग्नल मिल चुका है। सो आपने सुना होगा किसी को कहते हुए, क्योंकि ये खबरों में भी बात आ रही थी एंड मेनी पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट, कि कैसे एक सिग्नल, एक रेडियो सिग्नल जो है वो धरती पे आया है किसी दूसरे प्लैनेट से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लैनेट। सबसे पहले इसका नाम है बीटा पिक्टोरियस बी, जी हाँ। और दूसरी चीज ये है कि ये जुपिटर से 12 टाइम्स बड़ा है। एंड व्हेन आई से बड़ा, आई एम टॉकिंग अबाउट हेवियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मास, जी हाँ। इट्स हेवियर देन, 12 टाइम्स हेवियर देन जुपिटर इटसेल्फ, एंड इट इज ऑल्सो अ गैस जॉइंट, जी हाँ। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो रेडियो सिग्नल मिले, वो 0.5 GHz से 3.8 GHz तक मिली। और उसके बाद लोगों को पता चल गया कि ओके, ये रेडियो सिग्नल है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और ये कहीं दूर से नहीं बल्कि एक एक्सोप्लैनेट से आ रहा है जो कि अर्थ से सिर्फ 64 लाइट ईयर्स अवे है। सो स्पेस की भाषा में ये कोई बहुत ज्यादा लंबी दूरी नहीं है, बल्कि काफी पास है ये प्लैनेट हमसे। और जैसे मैंने कहा कि ये गैस जाइंट है, बहुत सारी गैसेस हैं इस प्लैनेट पे। और दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा हैवी है, लाइक हैवियर देन जुपिटर, 12 टाइम्स हैवियर। नाउ अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ओके, इस सिग्नल आया है तो क्या ये सिग्नल किसी एलियन जो है वो कम्युनिटी से हमें मिला है, किसी एलियन जो है प्रजाति से हमें मिला है। तो आपको निराश हम कर देंगे, क्योंकि ये किसी एलियन प्रजाति से नहीं मिला है। बेसिकली ये सिग्नल जो है वो वहां की अरोरा लाइट्स भेज रही हैं। आप लोग बोलोगे, अरोरा लाइट्स, आर यू टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स? वेल या, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न लाइट्स। सो अपेरेंटली वो जो प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक गैसेस को अपने अंदर लिए हुए है, मतलब उस पर बहुत ज्यादा खतरनाक गैसेस जो है वो है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गैस जाइंट, जस्ट लाइक जुपिटर। नाउ द थिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट इज, यहां पर अरोरा लाइट्स बनी है बहुत ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक। मतलब जैसे अरोरा लाइट्स आपको यहाँ के नॉर्दर्न पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की कंट्रीज में देखने को मिलती हैं, लाइक स्वीडन, लाइक यू नो फिनलैंड एंड नॉर्वे, वैसी सी ही नॉर्दर्न लाइट्स बनी है वहां पर भी उस प्लैनेट के ऊपर, लेकिन वो हमारी नॉर्दर्न लाइट से बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक। इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा खतरनाक कि वो अरोरा लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स जो है उसका सिग्नल हमारी अर्थ पकड़ रही है, जी हाँ। मतलब इट्स नॉट अ एलियन कम्युनिटी, यानी एलियन कोई सिचुएशन, इट्स अ अरोरा लाइट्स, इट्स नॉर्दर्न लाइट्स, जिसकी वजह से मतलब उसका जो फिनोमिना है वो इतना ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा है कि उसके सिग्नल जो है वो हमारी अर्थ की ऑब्जर्वेटरी और टेलीस्कोप्स जो है वो पकड़ रहे हैं। सो या, इट्स नॉट अ एलियन ट्राइब बट नॉर्दर्न लाइट्स। अब आप लोग बोलोगे कि नॉर्दर्न लाइट्स भी क्या रेडियो सिग्नल्स भेज सकती हैं? वेल, इसकी भी एक बनने का तरीका होता है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब वो फ्रीक्वेंसी एक लेवल से पार हो जाती है तो उसके सिग्नल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो सिग्नल्स दूर दूर तक पहुंचने भी शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन। मतलब नॉर्दर्न लाइट्स, बट आप कह सकते हो कि लेवल प्रो मैक्स वो बन रहा है उस प्लैनेट पर, और फिर उसके बाद उसके सिग्नल्स जो है वो दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंच रहे हैं, एंड अर्थ ने उन्हीं सिग्नल्स को पकड़ा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, जैसे मैंने कहा कि 2025 में भी ऐसा हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो इस स्पेस को, इस प्लैनेट को और हमारे गैलेक्सी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। एंड लेट मी टेल यू, दैट इज नॉट द प्लैनेट ऑफ आर गैलेक्सी, दैट्स अ प्लैनेट ऑफ सम अदर गैलेक्सी, या दैट इज ऑल्सो द केस। सो ऑफकोर्स ये सिग्नल मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब मिला तो स्टार्टिंग में ये लगा कि ओके, कहां से आया, मतलब कोई एलियन कम्युनिटी हमें भेजने की कोशिश कर रही है ये सिग्नल, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है।

जी दोस्तों, अर्श के साथ एक और बहुत ही जबरदस्त बात हम करने वाले हैं और ये है जुबिन नौटियाल से रिलेटेड। सो ऑफ कोर्स आपने अभी उनका गाना सुना और उनको हम बधाई देने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने और उनकी वाइफ ने वेलकम किया है एक बहुत ही प्यारे से बेबी बॉय को। जी हाँ, सो नन्ही किलकारी जो है वो गूंज उठी है जुबिन नौटियाल के घर पर और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू द लवली कपल बेबी बॉय को वेलकम करने के लिए, और हम यही कहेंगे कि आपके बेबी बॉय की जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहे, वो बहुत ज्यादा तरक्की करे, खुश रहे और आपके घर में भी खुशियां ऐसे ही बनी रहे। मतलब कितनी प्यारी बात होती है, राइट? सो या जुबिन नौटियाल ने अभी कुछ वक्त पहले ही अपनी जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ साथ फेरे लिए थे। जी हाँ, मतलब शादी के बंधन में वो बंध गए थे और ये उन्होंने तब किया था जब उन्होंने धुरंधर 2 के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना गाया था और उस गाने का नाम है क्या, क्या आप सोच सकते हैं? वेल, उस गाने का नाम है आखिरी इश्क एंड दैट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम धुरंधर 2 एंड उस गाने को सुनकर ना मुझे बस प्यार हो जाता है। सो ऑफ कोर्स वी आर गोना प्ले दैट क्योंकि जुबिन नौटियाल के घर में खुशियां जो है वो आई है, नन्ही किलकारी जो है वो गूंजी है, एक प्यारा सा मेहमान आया है। तो ऑफ कोर्स जुबिन नौटियाल का हम गाना जो है वो प्ले करेंगे। ऑल्दो ये गाना जो है वो थोड़ा सा सेंटी टोन की तरफ है बट गाना बहुत खूबसूरत है, सो वी आर गोना प्ले दैट। बट या कांग्रेचुलेशन टू जुबिन नौटियाल एंड हिज वाइफ बिकॉज ये बहुत ही प्यारा सा फेज है जो उनकी जिंदगी में शुरू हुआ है और ये हमेशा खुशियों से भरा रहे, यही हमारी दुआ है। ये रहा वो गाना जो मैं कह रही थी आपको बहुत ज्यादा।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438, या मोबाइल 04159526600, 04159526600।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज करने का, और वो है खबरों की तरफ रुख करने का। खबरों की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन क्या वो हमें ना पसंद होने के बाद बंद होनी हो जाएंगी, मतलब होनी बंद हो जाएंगी? वेल, ऐसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन इट्स हाई टाइम कि दुनिया के जो लीडर्स हैं वो कुछ सोचे समझे और उसके बाद ही अपने जो है वो डिसीजंस लें, क्योंकि उसका असर पूरे की पूरी पॉपुलेशन पर पड़ रहा है। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ईरान के इन तीन कमांडरों की सूचना देने वालों को $15 मिलियन देगा अमेरिका। जी हाँ, सो अमेरिका ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की एरोस्पेस फोर्स के तीन कमांडरों से जुड़ी जानकारी देने पर $15 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। BBC फारसी के मुताबिक ये घोषणा अमेरिकी विदेश विभाग के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत की गई। ये तीन कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला मेहराबी अहमद, जाफरावादी और अली असगर नौरूजी हैं। जी हाँ, ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला मेहराबी को IRGC की एरोस्पेस फोर्स के जिहाद रिसर्च एंड सेल्फ सफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख बताया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार अहमद जाफराबादी IRGC की एरोस्पेस फोर्स के वरिष्ठ कमांडर हैं और इस बल के संचालन संबंधी मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका ने अली असगर नौरूजी को रेवोल्यूशनरी गार्ड की रेडीनेस एंड स्पोर्ट का डिप्टी डायरेक्टर बताया है। और अमेरिका ने ईरान के रक्षा मंत्रालय से जुड़े 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने प्रतिबंधों की सूची जारी की है, जिसमें ईरान के अलावा मेक्सिको, चीन और पाकिस्तान के नागरिकों के नाम भी यहां पर शामिल किए गए हैं।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और वहीं भारत से खबर है। जम्मू कश्मीर कठुआ में CISF जवान ने साथियों पर की फायरिंग, असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 की मौत। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में मंगलवार शाम एक CISF जवान ने कथित तौर पर अपने साथियों पर सर्विस राइफल से फायरिंग कर दी। घटना में असिस्टेंट कमांडेंट समेत CISF के 4 जवानों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक वारदात शाम करीब 7:30 बजे बसोली के पास माशका में हुई। न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार CISF के हेड कांस्टेबल अभिदेश कुमार का कुछ साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उन्हें कथित तौर पर अपनी सर्विस राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 4 CISF कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी NHPC अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडे, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल रफीक अहमद और कांस्टेबल संदीप कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद अभियुक्त हेड कांस्टेबल को उसके साथियों ने काबू कर लिया, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार घटना में इस्तेमाल सर्विस राइफल भी जब्त कर ली गई है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर खबरों की बात हो रही है। और एक और खबर जो कि भारत से ही है, खासकर जम्मू कश्मीर से, वहां सेना यानी कि आर्मी ने लश्करे तैयबा से जुड़े चरमपंथी को मारने का किया है दावा। जी हाँ, भारतीय सेना ने बुधवार को दावा किया कि मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में चलाए जा रहे आतंकवादी विरोध अभियान में पाकिस्तानी चरमपंथी को मार दिया गया है। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पास युस्मग पर्यटन क्षेत्र के कोराग इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। चिनार कोर के मुताबिक सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती देने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे जबरदस्त मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया गया। मृतक की पहचान मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। वो पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन लश्करे तैयबा से जुड़ा था। सुरक्षा बलों के मुताबिक युस्मग के ऊंचाई वाले इलाकों में यह दूसरा चरमपंथी है जिसने हालिया अभियानों के

अभियानों के दौरान मारा गया है। इन इलाकों में पिछले कई हफ्तों से चरमपंथ विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला के कई पर्यटन स्थलों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया है। अधिकारियों को इन इलाकों में चरमपंथियों की मौजूदगी की आशंका नजर आई है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ईरान की तरफ से एक और नई धमकी आ गई है। आइए जरा आपको बताते हैं। वेल, वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज के लिए है उनके लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। जी हाँ, नेतन्याहू के यूएई दौरे के बाद ईरान ने बाकी देशों को चेतावनी दी है। ईरान ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त अरब अमीरात दौरे की निंदा करते हुए बयान जारी किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने मध्य पूर्व के देशों को नेतन्याहू के यूएई दौरे के बाद चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे अस्थिरता पैदा होगी। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार रात जारी बयान में कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। ऐसा कोई भी कदम जिससे क्षेत्र में असुरक्षित ताकतों को आने का रास्ता बने आखिरकार क्षेत्र के सभी देशों के लिए नुकसानदेह होगा। इससे पश्चिम एशिया में बंटवारा, असुरक्षा और अस्थिरता पैदा होगी। इसलिए क्षेत्र की सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को समझें। बयान में कहा कि वे बाकी देशों की सरकारें यानी कि इजरायली शासन की नुकसान पहुंचाने वाली मौजूदगी के लिए रास्ता बनाने से बचें और अपनी जमीन को दूसरे देशों के खिलाफ होने वाली गतिविधियों का मंच न बनने दें। गौरतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू रविवार को यूएई के दौरे पर थे। उनकी वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात हुई। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस दौरे की पुष्टि 2 दिन बाद की। अब ऐसे में ईरान को ये बात राज नहीं आ रही है और वो धमकी भी यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
7: दोस्तों आप रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और अभी कुछ वक्त पहले एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट इट। जी हाँ, सो सऊदी अरब की और मुड़ी फ्लाई दुबई की उड़ान। जी हाँ, एक ऐसी फ्लाइट जो कि जा रही थी तेल अबीब की तरफ, जो जा रही थी इसराइल की तरफ UAE से, उसे क्यों मोड़ना पड़ा? जी हाँ, सो क्या है जानकारी है? ये जरा आपको बताते हैं। और ये कुछ देर पहले ही आई है, इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमीरात से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई का एक विमान अचानक अपने तय उड़ान मार्ग से हट गया। मीडिया के मुताबिक ऐसा लगता है कि विमान सऊदी अरब में उतरने के लिए नीचे आ रहा था। जी हां, समाचार एजेंसी राइटर्स ने इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान के सऊदी अरब की ओर मुड़ने को विमान अपहरण की घटना नहीं माना जा रहा। ऐसा कहा जा रहा था कि शायद फ्लाइट हाईजैक का कोई सिचुएशन है, जिसके वजह से फ्लाइट को जो है वो जॉर्डन की तरफ लाया गया और फिर जॉर्डन की तरफ से उसे सऊदी अरब की तरफ लाया गया। जी हाँ, अब नीचे आते समय विमान के कुछ समय के लिए आपदा स्थिति का संकेत दिया और मैनुअल तरीके से दिशा बदलते हुए नीचे उतरने लगा। जिसके बाद विमान ने उस कोड का प्रसारण किया जिसका इस्तेमाल विमान के अपहरण की सूचना देने के लिए किया जाता है। विमान ने अपना मार्ग सऊदी अरब की ओर मोड़ लिया और अब ऊंचाई पर आने लगा। इसराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री फिलहाल आपात बैठक कर जा रहा है कि उन्होंने डिप्लॉय किए हैं कुछ जेट्स भी ताकि देखा जा सके क्या है सिचुएशन। समाचार एजेंसी राइटर्स ने इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान के सऊदी अरब की ओर मुड़ने को विमान अपहरण की घटना नहीं माना जा रहा है।
8: अरे पूछो ना।

0: संघ, तुम्हारे ऐसे पैसे से ढपक ढपक लगे हुए हजाम हजाम कर बंद करो नौटंकी। अरे मुंह का देख रहा है, किसी राजा महाराजा को राजू राजू कह कर बुलाओगे का? ये बिलुआ को हजाम नहीं, बार बार कहकर बुलाओ बार बार, और वो भी इज्जत से बिल्लू बार बार, समझा गया? नहीं नहीं दई खींच पर नहीं आई ससुरा मार दे तो पटाक से।
1: अरे

पता चल गया है, मुझे एहसास हो गया है कि दुनिया में ट्रंप ने कदम ही रखा है अपनी खिल्ली उड़वाने के लिए। मतलब उनकी खिल्ली ने ही उड़ा दी थी सबसे पहले, जब उन्होंने कहा था मेरा बेटा ना अच्छा है, मेरा बेटा है, ऑफ कोर्स मेरा बेटा मुझे प्यारा ही होगा, लेकिन वो कभी पॉलिटिक्स में ना जाए, यही मैं कहूंगी। जी हाँ, लेकिन उनकी माँ की बात उन्होंने नहीं सुनी और शायद और लोगों ने भी नहीं सुनी। मतलब माँ तो अपने बच्चे को हमेशा अच्छे से जानती है, राइट। बट देन वो पॉलिटिक्स में आ गए और वो एकदम खतरनाक जो है धुआं धुड़ंग जो है यहां पर कर रहे हैं। चलिए अब हम किस बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। सो ट्रंप ने ऑफिशियली चेंज कर दिया है अमेरिका में एआई का नाम SI, जी हाँ, सुपर इंटेलिजेंस। सो बेसिकली इट्स नॉट गना बी AI फ्रॉम नाउ ऑन इन अमेरिका, इट्स गना बी SI, विच मींस सुपर इंटेलिजेंस। ट्रंप का मानना था कि AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी सुप्रीम पावर के लिए बड़ा छोटा सा और नकली सा नाम लगता है। इट इज अ सुप्रीम पावर, सो इट हैज टू बी समथिंग भारी भरकम। जी हाँ, सो दैट्स व्हाट ही डिड। और उन्होंने इसका एक जो ऑफिशियल जो है लेटर है, जो ऑर्डर है, वो भी साइन कर दिया है। But you know what? ट्रंप और ट्रंप के आजू बाजू वाले सच में अपनी खिल्ली उड़ाने के लिए पैदा हुआ है। मतलब AI को SI बना रहे हैं, लेकिन अपने टाइपोज जो है वो चेक नहीं करते हैं। सो बेसिकली वही कागजात जिसमें AI को SI बनाया गया, उसी में अपने दस्तखत के नीचे लिखा हुआ था डोनाल्ड जूनियर ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। जी हाँ, यूनाइट्स, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये देखते ही लोग हंस हंस के गिरने वाले हो गए। लोगों को लग रहा है अरे भाई, जिसकी स्पेलिंग ठीक है उसको तो ठीक करके लिख लो पहले, AI को SI बाद में बनाना। मतलब इतनी चुल है इस इंसान को कि मैं तो ये करूंगा, मैं नाम चेंज करूंगा। नाम चेंज करना ही इस इंसान को सबसे ज्यादा पसंद है, आई एम टेलिंग यू। ऑफ कोर्स पहले नंबर पर मैकडॉनल्ड खाना ही होगा, लेकिन दूसरे नंबर पर नाम चेंज करना जो है इट्स हिज मतलब फेवरेट हॉबी। लेकिन जहां पर नाम चेंज करने का वो पूरा का पूरा ऑर्डर है, उसमें दस्तखत के नीचे पढ़ तो लेते भाई, तुम मतलब क्या कर रहे हो, यूनाइटेड को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कर दिया। वाह, इससे पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई भी हर जगह नहीं होती है। जी हाँ, मतलब लोग पढ़े लिखे लग सकते हैं, बट वो पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते हैं। That's what is happening here. मतलब वाह, ऐसा ही बना रहे हो और अपने आप को यूनाइटेड से यूनाइट बना दिया। जी हाँ, यहाँ पर ये जबरदस्ती फनी सी चीज हुई है। And I was like, wow. You know, only Trump and Trump administration can do it. मतलब आप खुद सोचिए कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ तो है, जो कि ट्रंप को ऐसे से ट्वीट करने देते हैं लिटरली। मतलब ऐसे से ट्वीट उन्हें और कोई करने नहीं देगा, तो उन्होंने अपनी कंपनी ही खड़ी कर दी, ट्रुथ सोशल। जी हाँ, मैं जो भी लिखूंगा अपनी ही कंपनी पे लिखूंगा, क्योंकि बाकी वाले तो मुझे पेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो या दैट्स व्हाट ही डिड। बट या, AI को SI बना दिया और यूनाइटेड को यूनाइट बना दिया। ही इज फनी, आई गेस। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। आई होप आप उसके लिए रेडी हो, और अगर आपको नहीं पता है कि उसका मतलब क्या है, आप हमारे नए लिसनर हो, तो मैं आपको बता दूं कि ओल्ड इज गोल्ड का मतलब है कि पुराने गाने ही होंगे अब प्ले पूरी तरह से, और पुराने किस्सों का भी साथ होगा। मैं आपको पुराने किस्से सुनाऊंगी, पुराने गाने भी सुनाऊंगी। अगर आपके पास कोई फरमाइश है जो कि पुराने गानों से रिलेटेड है, तो वो भी आप फरमाइश कर सकते हैं इस वक्त। दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट टाइम। जी हाँ, तो सबसे पहला जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि उसका नाम है दिल तेरा दीवाना है सनम। डोंट वरी, मैं गाने नहीं वाली हूँ। मुझे पता है जब मैं गाती हूँ आप लोग डर जाते हो कि ओह भागो, बट डोंट वरी, वी आर नॉट गोना डू दैट। अब गाना सुनाएंगे आपको और फिर उसके बाद किस्से भी सुनाएंगे। तो करते हैं शुरुआत ओल्ड इज गोल्ड की इस खूबसूरत से गाने के साथ।

जी हाँ दोस्तों, एक बात सोच के थोड़ा सो तो ऐसा फील होता है कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता था। मतलब ऑफ कोर्स हमें ऐसा तो लगता ही है, हैरानी तो होती है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। जब बड़े बड़े स्टार भी किसी वक्त किसी स्टार के कायल हुए हो, उनके फैन हो, और जब उनकी मुलाकात हुई हो तो वो भी क्रेजी हो गए हो, मतलब कभी उन बड़े बड़े स्टार्स ने भी क्रेजी फैन की तरह बिहेव किया हो, क्या आप गेस कर सकते हैं? वेल ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है। और वहीदा रहमान बताती हैं कि वो देवानंद साहब की बहुत बड़ी फैन थी। जी हाँ, अब वहीदा रहमान की पहली पिक्चर थी CID, और CID करने के लिए जब उन्होंने साइन किया था तो उन्हें ये पता ही नहीं था एंड मौके तक भी कि वो किस एक्टर के साथ काम करने वाली है। मतलब उनको स्टोरी पता थी, उन्हें ये पता था कि वो एज एन एक्टर जो है, एक्ट्रेस जो है, इस मूवी में काम करने वाली है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कौन से एक्टर के साथ काम करने वाली है। जब वो सेट पर पहुंचती हैं पहले दिन और वो देखती हैं कि जिस हीरो के साथ वो काम करने वाली है देवानंद साहब हैं। जी हाँ, और वहीदा रहमान देवानंद साहब की बहुत ही बड़ी फैन थी। मतलब अगर उन्होंने चाहा था कुछ तो वो यही था कि वो देवानंद साहब के साथ काम करना चाहती थी। एंड गेस व्हाट, वो चीज, वो मनोकामना, वो मैनिफेस्ट उन्होंने अपनी पहली मूवी में ही जो है, उनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। वो कहती हैं कि जब मैं वहां पर सेट पे पहुंची और सबसे मिलाया गया तो देवानंद साहब भी वहां थे, और देवानंद साहब से इंट्रोड्यूस किया गया कि ये है आपकी मूवी की एक्ट्रेस, और ऑफ कोर्स मुझे भी देवानंद साहब से मिलाया गया। लेकिन मुझे तो देवानंद साहब के बारे में पहले ही सब कुछ पता था, मैं तो फैन थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान की कृपा से मैंने कोई क्रेजी बिहेव नहीं किया। अदरवाइज जितनी बड़ी फैन मैं देवानंद साहब की थी, देयर वाज अ चांस कि मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती थी। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, quality designer saris, lehengas, salwar kameez, party wear and men's shirts and suits. You can also order tailor-made suits from Rani Creations. Itna hi nahi, original DVDs, CDs, phone cards, prepaid charge cards, fancy jewelry, bangles, giftware bhi uplabdh hai. For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava Street, Wollongabba, open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेस सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रेस सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों आप जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि शायद इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको पता भी नहीं होगा। जी हाँ, सो ये वक्त था 1940 का। जी हाँ, 1940 के दशक में सभी हीरो अपने गाने खुद ही गाया करते थे। जी हाँ, आई एम डैम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं थी। जी हाँ, एंड दैट वॉज द रीजन KL सहगल जैसे बड़े बड़े एक्टर और सिंगर जो कि सिंगिंग भी करते थे और एक्टिंग भी करते थे, वो उस वक्त हुए। जी हाँ, अब ये किस्सा है उस मूवी का जिसका नाम था साजन, और इसमें अशोक कुमार जो है, सुपरस्टार अशोक कुमार जो है, वो किरदार निभा रहे थे हीरो का। और यहाँ पर वक्त था उस मूवी का 1947। जी हाँ, 40 के दशक में 1947 का प्रिसाइजली वो वक्त था जब ये मूवी जो है वो बन रही थी। अब इस मूवी का एक गाना था जिसकी रिकॉर्डिंग के लिए अशोक कुमार को रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचना था, लेकिन दंगे इतने ज़्यादा हो रहे थे उस वक्त और माहौल इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच ही नहीं पाए। जी हाँ, वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो ही नहीं पहुंच पाए। तो इस बात से जो डायरेक्टर थे फिल्म के, वो बहुत ज़्यादा निराश हुए, वो बहुत ज़्यादा चिंता में चले गए कि अगर ऐसा ही हुआ तो हम कैसे इस मूवी को रिलीज़ करेंगे, कैसे ये गाना कब गाएंगे और कब ये मूवी रिलीज़ होगी। तो उस मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे सी रामचंद्रन जी। हाँ, उन्होंने बिना सोचे समझे जल्दी से रफी साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही उभरता हुआ सिंगर है, बहुत ही खूबसूरत गायकी करता है, आवाज बहुत अच्छी है, ऐसा करते हैं उससे ये वाला गाना गवा लेते हैं। और वो गाना एग्जैक्टली कौन सा था? वो गाना था हमको तुम्हारा ही आसरा। जी हाँ, ऑफकोर्स इस मूवी के बाकी गाने भी अशोक कुमार गा रहे थे, और ऐसे में इस पर्टिकुलर गाने की रिकॉर्डिंग में जब वो नहीं पहुंच पाए तो रफी साहब का नाम जो है वो सी रामचंद्रन ने लिया। फिर क्या था, बिना देरी करते हुए रफी साहब को बुलाया गया और रफी साहब ने जब ये गाना गाया तो इतनी खूबसूरती से गा दिया कि सब लिटरली इस गाने के और उनकी गायकी के दीवाने हो गए, इतनी ज्यादा दीवाने हो गए कि अशोक कुमार जो कि इस मूवी के हीरो थे और जो सिंगिंग भी करने वाले थे इस मूवी के गाने की, वो कहते हैं कि ये गाना इतनी खूबसूरती से रफी साहब ने गाया है कि तुम ऐसा करो, श्री रामचंद्र जी को उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो बाकी गाने भी रफी साहब से ही गवाओ, मैं चाहूंगा रफी साहब ही बाकी गाने भी गाएं क्योंकि इतनी खूबसूरत गायकी है इनकी कि इनकी गायकी से अगर हमारे इस फिल्म में ये खूबसूरत गाने आएंगे तो इससे काफी बल मिलेगा। बस वही वो वक्त था जिसने पूरी की पूरी एरा को चेंज कर दिया। जी हाँ, और आप लोग बोल रहे होंगे कि इसके बारे में मुझे कहाँ से पता चला, तो बेसिकली बहुत ही फेमस जो है वो राइटर हुए हैं राजू भारतन, उनकी किताब अ जर्नी डाउन मेमोरी लेन में उन्होंने बताया था कि कैसे एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दिन जब बहुत ज्यादा दंगे चल रहे थे और ऐसा माहौल था जिसकी वजह से अशोक कुमार पहुंच नहीं पाए, और उसी ही चीज ने एक नई एरा की शुरुआत की। वो एरा थी कि दूसरे लोग भी सिंगिंग कर सकते हैं और हीरो जो है उन्हें अपने गाने खुद नहीं गाने होंगे, अगर वो नहीं गाना चाहते हैं उनके लिए सिंगर सिंगिंग कर सकते हैं और उनको सिर्फ लिप सिंग करना होगा। उससे पहले ऐसा होता ही नहीं था, इमेजिन, उससे पहले हीरो ही अपने गाने गाते थे, इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग। लेकिन रफी साहब की गायकी इतनी बलवान थी कि उन्होंने अपना रास्ता खुद ही तय कर दिया और बाकी सिंगर्स के लिए भी उन्होंने वहां पर रास्ता बना दिया। जी हाँ, यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना, अगेन जब बात हुई है तुम्हारा ही आसरा, हमको तुम्हारा ही आसरा का, तो उसी गाने को हम आपको सुनाने वाले हैं।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल और मिलना होगा आपसे, गपशप भी होगी आपसे, गाने भी सुनाएंगे आपको। आज आप मजे कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, वो चीज कीजिए जो आपको खुश करती है, और खुश रहिए। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। एंड ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन स्टेडियम प्रोजेक्ट निर्माण के लिए बिल्डर्स की रेस तेज। जी हां, 2032 के ओलंपिक खेलों की तैयारी में जुटे ब्रिस्बेन शहर के लिए आज एक बड़ा अपडेट आया है। नए ब्रिस्बेन स्टेडियम के निर्माण के लिए निर्माण कंपनियों के चयन का काम अगले चरण में पहुंच गया है। करीब 7.1 अरब डॉलर के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए दुनिया की दिग्गज निर्माण कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं क्वींसलैंड में अचानक बढ़ी गर्मी, फसलों पर पड़ा असर। सनशाइन स्टेट क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन के आसपास के इलाकों में इस हफ्ते अचानक तापमान बढ़ गया है। इस बिन मौसम की गर्मी और सूखे मौसम के कारण चने और दालों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बास्केटबॉल ब्रिस्बेन बुलेट्स का आज बड़ा मुकाबला। ऑस्ट्रेलियन बास्केटबॉल लीग NBL में आज ब्रिस्बेन बुलेट्स टीम का मुकाबला सिडनी से हो रहा है। इस सीजन में दोनों ही टीमें अब तक एक भी मैच नहीं हारी हैं। वहीं पोर्ट ऑफ ब्रिस्बेन पर कंटेनर प्रेट शिपिंग को प्राथमिकता। जी हां, व्यापारिक मोर्चे पर खबर यह है कि ब्रिस्बेन के प्रमुख बंदरगाह पर इस सीजन में कंटेनर शिपिंग को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि भारी सामानों के मुकाबले छोटे कंटेनर से एक्सपोर्ट करना ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। इसी के साथ दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड में सड़कों को चौड़ीकरण का काम तेज। जी हां, ब्रिस्बेन और उसके आसपास के हाईवे पर ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए काउंसिल ने आज एक नया प्लान जारी किया है। इसके तहत आगामी ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और नए साइकिल ट्रैक बनाने का काम अगले महीने से तेजी से शुरू किया जाएगा। वहीं ब्रिस्बेन में लोकल आर्ट और कल्चरल फेस्टिवल की घोषणा। ब्रिस्बेन शहर के कला प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। स्थानीय प्रशासन ने आज घोषणा की है कि इस हफ्ते के अंत में शहर के प्रमुख पार्कों में एक बड़ा कम्युनिटी कल्चरल फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोकल म्यूजिशियंस और फूड स्टॉल्स शहरवासियों का मनोरंजन करेंगे। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले भारतीय नौसेना में शामिल होंगे 18 नए युद्धपोत। भारतीय नौसेना की ताकत में आज एक बहुत बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि इस साल नौसेना की बेड़े में कुल 18 नए युद्धपोत शामिल किए जा रहे हैं। वहीं भारतीय दवाओं पर अमेरिका ने हटाई कस्टम ड्यूटी। भारतीय फार्मा कंपनियों और मरीजों के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर आई है। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के 19 देशों से आने वाली कई खास दवाओं पर लगने वाले सभी टैरिफ और टैक्स पूरी तरह से हटा दिए हैं। वहीं रेडबुल पर ASSI की कार्रवाई, कंपनी पहुंची कोर्ट। जी हां, मशहूर एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रेडबुल और भारत की खाद्य सुरक्षा एजेंसी FSSI के

बीच कानूनी विवाद बढ़ गया है। एफएसएसआई ने कंपनी को अपने डिब्बों पर ऊर्जा पेय या एनर्जी ड्रिंक शब्द लिखने से रोक दिया था, जिसके खिलाफ रेडबुल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं उच्च शिक्षा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक विशेष कमेटी ने आज अपनी राष्ट्रीय रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लगभग 15% छात्र भारी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कोर्ट ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए तुरंत नए काउंसलिंग सेंटर शुरू करें। वहीं नई ट्रेन मछलीपट्टनम कुरुलुन एक्सप्रेस की हुई शुरुआत। रेल यात्रियों के लिए सहूलियत के लिए आज रेल मंत्रालय ने एक नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की है। मछलीपट्टनम कुरुनूल सिटी एक्सप्रेस नाम की यह ट्रेन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी। इसके साथ दिल्ली में युवाओं के लिए चुनाव आयोग का विशेष वोटर कैंप। राजधानी दिल्ली में तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में आज चुनाव आयोग की तरफ से एक खास अभियान चलाया जा रहा है। 18 साल पूरे कर चुके युवा छात्रों का नाम वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए जगह जगह स्पेशल रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए गए हैं। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले इराक में खत्म हुआ अमेरिकी सेना का 20 साल पुराना मिशन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आज बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अमेरिकी सेना ने इराक में अपने सभी प्रमुख सैन्य ठिकानों को खाली कर दिया है और अपना मिशन आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। वहीं ईरान ने दी चेतावनी, तेल निर्यात में रुकावट बर्दाश्त नहीं। जी हां, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गलिवाफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान के कच्चे तेल की बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश की गई तो इस इलाके का कोई भी दूसरा देश भी तेल का निर्यात नहीं कर पाएगा। वहीं जर्मनी में बढ़ी महंगाई, साल 2022 का रिकॉर्ड टूटा। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में आर्थिक मोर्चे पर चिंताजनक आंकड़े आए हैं। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जर्मनी में आयात यानी इंपोर्ट होने वाले सामानों की महंगाई दर 2022 के बाद से अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ईंधन और खान पान की चीजों के दाम बढ़ने से आम लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। इसके साथ वैज्ञानिकों ने खोजी पेंगुइन की बिल्कुल नई प्रजाति। जी हां, पर्यावरण और विज्ञान की दुनिया से एक बहुत अच्छी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने 100 से भी ज्यादा सालों के बाद पहली बार पेंगुइन की एक बिल्कुल नई प्रजाति की पहचान की है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था पर नया अपडेट। ब्रिटेन यानी यूके के आर्थिक आंकड़े आज सार्वजनिक किए गए हैं। दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 0.5% यानी 0.5% रह गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डिफिसिट थोड़ा कम हुआ है। वहीं इसराइल और नेतन्याहू की मीटिंग पर सऊदी अरब की सफाई। जी हां, सऊदी अरब ने उन तमाम मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि उनके अधिकारियों ने इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने आज आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि नेतन्याहू के हालिया यूएई दौरे के दौरान उनके किसी भी प्रतिनिधि ने इसराइली नेताओं से कोई बैठक नहीं की है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले एशियन गेम्स 2026 तीरंदाजी में भारत ने जीता दोहरा गोल्ड। जी हां, जापान में खेले जा रहे एशियन गेम 2026 से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर आई है। तीरंदाजी के मिक्स्ड टीम इवेंट में तनी पार्थी चिकिथा और साहिल जाधव की जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को रोमांचक मुकाबले में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। वहीं विद्या रामराज ने तोड़ा पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड। ट्रैक एंड फील्ड से भारत के लिए गर्व करने वाला पल आया है। एथलीट विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही उन्होंने महान एथलीट पीटी उषा का 1984 का 55.42 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर 54.75 सेकंड का तय समय
दर्ज किया है। वहीं भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा वनडे मैच गुवाहाटी में। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और बड़ी अपडेट, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जा रहा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर देते हैं। असी होर भी वर्ल्ड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हैं अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हैं। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हैं। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हैं। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वर्ल्ड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या लंग

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fijian India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

ना बदला मैं ना बदला वो ना बदला तू, अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

ट्रंप व्हाइट हाउस में आया तो सबने बोला एक होयो भाया। नाम से डोनाल्ड ट्रंप और हरकत से डोनाल्ड डक नजर आया।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज्जी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ
1: ਸਾਸੋਂ ਕੀ ਮਾਲਾ ਪੇ ਸਿਮਰੂ ਮੈਂ।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
6: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 32737365. That's 32737365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400

0: 4435 पर या फिर ईमेल करें singhdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
2: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलनगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं, हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं। सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता की ये बात जिंदगी के हर मोड़ पर, हर परेशानी में हमारे लिए बहुत जरूरी और कारगर है। अगर हम इसे याद रखें तो शायद हम जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस बड़े ही आराम से ले सकते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से जिंदगी के ऐसे ही पन्नों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, जीवन आधार में उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर, उस वाहेगुरु अल्लाह और जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़कर उनकी कही कई बातों पर जरा ध्यान देके गौर करके अपने जीवन को एक आधार देते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सताक्षी आपके साथ जीवन आधार में और लेकर आई हूं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर यही सफर। आज एक नई सुबह, एक प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी से भरी सुबह आपके लिए फिर से। आइए इसे एक अगले गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए मेरे साथ जीवन आधार।

कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटघट हरि हैं दुनिया देखे नाही। ऐसे घटघट हरि हैं दुनिया देखे नाही। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं जीवन आधार सताक्षी के साथ। हम उस शक्ति को जो इस दुनिया को चला रही है, जिसे हमारी खुशी हमारे गम हर चीज का ख्याल है, या जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आती है, उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। मंदिर में, चर्च में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, हर जगह जाके हम उस शक्ति को खोजने की, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमें उसकी कृपा मिल सके, हम उसे प्राप्त कर सकें। लेकिन देखा जाए तो आपके अंदर ही तो वो शक्ति है। आपके अंदर ही वो राम है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर ही वो अल्लाह है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अपने मन के अंदर झांकिए। मन के अंदर कैसे झांकेंगे? ऐसे नहीं झांकेंगे। मन के अंदर तब झांकेंगे जब अपने मन को समझ पाएंगे। एक बार मन को समझ गए तो ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमेशा आपको हर जगह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आइए इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। हमारे जीवन आधार के सफर में सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

रेडियो प्रसारी 1701 AM पर जीवन का आधार, जीवन आधार श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। आज अपने जीवन को आधार देने की, उसे समझने की, जानने की हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे।

दोस्तों हम मनुष्य भी कितने अजीब हैं ना, मतलब दुख में तो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब सुख के दिन होते हैं, जब सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा होता है, बेहतरीन चल रहा होता है, तो अक्सर रातें हमारी सोकर बीतती हैं, दिन खाकर गुजर जाते हैं। हर एक चीज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, हम दुनिया की सबसे कीमती या बेशकीमती चीजें पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारी चीजें हमारे साथ हों, हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो सुख सुविधा से जुड़ा जो हमारे पास ना हो, है ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उसे हम अक्सर भूल जाते हैं सांसारिक कीमती चीजों को पाने के चक्कर में। हम भूल जाते हैं कि उस ईश्वर से बढ़कर, उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु से बढ़कर भला हमारे जीवन में कीमती और क्या हो सकता है। आपको जो मिलता है वो भी उसकी मर्जी, और जो नहीं मिला वो भी उसी की मर्जी। इसी बात पर ही अगला गाना सुनिए। इसे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप हैं सताक्षी के साथ।

हार आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो पुलिसवानी 1701 AM पर और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परमपिता को, उसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

कहानी 1701 एम्पायर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। हम अक्सर कहते हैं कि मन हमेशा सही होता है, मन हमेशा सच बोलता है और इसीलिए जो मन कहे वही करना चाहिए। लेकिन यही मन है दोस्तों जो लालची है, जो सब कुछ खुद के लिए पाना चाहता है, सब कुछ खुद के लिए करना चाहता है। यही मन है जो चंचल है और चोर भी है, हर तरफ भागता है, आज यहाँ तो कल अपने फ्यूचर की न जाने कितने ज्यादा दिनों के फ्यूचर की प्लानिंग कर डालता है। मन आपका आज में रहता ही कहाँ है, वो तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। हाँ, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन आपका मन पहुंच जाता है। लेकिन इस मन के हिसाब से मत चलिए। माना कि ये मन हर जगह पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी इस मन के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि ये मन ही है जो हर पल बदलता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। कहते हैं ना, अभी आप कुछ सोच रहे थे, अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। हमारा मन हमेशा अपने रास्ते खुद बना लेता है। मन के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मन को चलाइए, क्योंकि अगर एक बार आपका मन आपको कंट्रोल करने लगा तो परेशानी बहुत बहुत हो जाएगी। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और रहिए।

18। आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो पुलिसवानी 1701 AM पर, और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परमपिता को, उसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

वाणी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी बहुत बड़ी चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बड़ी हो ताकि हम जिंदगी के हर एक पल का मजा ले सकें और ज्यादा दिन जी सकें, ज्यादा दिन अपनी जिंदगी को इंजॉय कर सकें। फिर तो पता नहीं ये जिंदगी कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादा जियेंगे तो ज्यादा इस जिंदगी को संवार पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जिंदगी एक दिन की है, चार दिन की है या फिर सालों की है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे जीते कितना है। बहुत सारे लोग तो बुजुर्ग भी हो जाते हैं लेकिन जिंदगी उन्होंने जी ही नहीं होती है। कम से कम वैसे मत बनिए। जिंदगी चाहे एक दिन की ही क्यों ना हो, लेकिन इसे इस अंदाज में गुजारिए कि ये दुनिया का एक सबसे खूबसूरत और प्यारा पल रहे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएं, आप अपनी जिंदगी का हर पल मुस्कुराते हुए बिता पाएं और औरों को मोटिवेशन दे पाएं। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी, आपके साथ है सताक्षी।

दोस्तों ये था आज एक बार फिर से जीवन आधार पर मेरा आपके साथ एक और साथ। कल फिर से एक ऐसे ही साथ पर हम और आप साथ साथ चलेंगे। कल हमें सुनना मत भूलिएगा और आज के सफर से आप लूंगी इजाजत।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार, अदाब, सत श्री अकाल। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी एंड अ वेरी वेरी हैप्पी थर्सडे टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिसनर्स। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजी जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी में प्रोग्राम जाने का सफर, जहां सुबह की शुरुआत होती है पॉजिटिव वाइब्स, देसी तड़के और ढेर सारी अपनापन वाली बातों के साथ। ब्रिस्बेन, क्या हाल चाल है वैसे आप सभी के? कुछ लोग तो अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके होंगे, है ना? सब अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, अलार्म तो कहता है भाई उठो, और हम कहते हैं बस 5 मिनट और, है ना? लेकिन दोस्तों, आज एक नया दिन है, एक नई अपॉर्चुनिटी है और एक नया चांस है अपने कल से बेहतर और अपने कल को बेहतर बनाने के लिए। और अक्टूबर का पहला दिन भी है, कैलेंडर बदल गया है, मंथ बदल गया है, तो क्यों ना आज हम अपनी एनर्जी भी थोड़ी सी अपग्रेड कर लें, है ना? आज का सिंपल सा मंत्र है, डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट डे, मेक टुडे मीनिंगफुल, है ना? अच्छा, आपका दिन कैसा जाने वाला है इसका पूरा कंट्रोल शायद आपके पास ना हो, लेकिन आप अपनी शुरुआत किस एटीट्यूड से करते हैं वो जरूर आपके हाथ में है। तो एक स्माइल कीजिए, अपनी चाय या कॉफी उठाइए और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बिकॉज ब्रिस्बेन योर मॉर्निंग साउंड ट्रैक स्टार्ट्स राइट हियर राइट नाउ ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक है दोस्तों, मैं हूँ आरजे चांदनी और आपके थर्सडे को बना रही हूँ थोड़ा सा ब्राइटर, थोड़ा सा लाइटर और फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको आज अपनी लाइफ में एक चीज इम्प्रूव करने का चांस मिले तो दोस्तों वो क्या होगी? क्या आप अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने चाहेंगे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहेंगे, या फिर अपना कोई ड्रीम जो है वो परस्यू करना चाहेंगे, या फिर बस थोड़ा सा कम स्ट्रेस जो है वो लेना चाहेंगे? कभी कभी दोस्तों हम अपनी लाइफ में ना इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद से पूछना ही भूल जाते हैं कि एम आई एक्चुअली हैप्पी विद द वे आई एम लिविंग। याद रखिए दोस्तों, प्रोग्रेस का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। कभी कभी टाइम पर उठ जाना या किसी अपने को फोन कर लेना या फिर अपने लिए खुद के लिए 15 मिनट निकाल लेना भी एक प्रोग्रेस ही होती है। और मेरी वर्किंग लिसनर्स जो है उनके लिए भी एक स्पेशल सा रिमाइंडर है, आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है दोस्तों, आपकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है और अपनी ड्रीम्स भी है, और उनके लिए वक्त निकालना बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों, डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समबडी एल्स चैप्टर 20, है ना। हर किसी का जो जर्नी है वो अलग है, टाइमिंग अलग है, सक्सेस की डेफिनेशन भी अलग है। तो दोस्तों चलिए, अब आपकी बारी है, आप हमें मैसेज करके बताइए, व्हाट इज वन स्मॉल थिंग दैट मेक्स योर मॉर्निंग बेटर? इज इट चाय, म्यूजिक, अ वॉक, प्रेयर और अ हग फ्रॉम योर लव्ड वंस? तब तक एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जो हमें याद दिलाता है कि लाइफ को खुलकर जीना भी बहुत जरूरी है। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

स्वागत है एक बार फिर से रेडियो ब्रिस्बानी में। सो दोस्तों, ब्रिस्बन प्रॉपर्टी अपडेट की एक जो बात है वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हाउसिंग मार्केट पर इंटरेस्ट रेट्स और अफोर्डेबिलिटी का जो प्रेशर है वो बना हुआ है। ब्रिस्बन की प्रॉपर्टी प्राइजेज और सितंबर के जो मार्केट फिगर्स है उस पर भी नजर रखी जा रही है। अगर आप होम बायर हैं या फिर प्रॉपर्टी मार्केट फॉलो करते हैं तो लेटेस्ट वेरीफाइड फिगर्स चेक करना जरूरी है। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी।

इसी के साथ अगर म्यूजिक लवर्स की बात करें तो भाई काइली का नाम तो भाई अपना एक मन में एक जुबान में ठहर सा गया है ना, और आपने तो जरूर सुना ही होगा। सितंबर के AFL ग्रैंड फिनाले में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसने पॉप म्यूजिक की यादें जो है वो ताजा कर दी, और साथ ही साथ दोस्तों उनके पॉपुलर ट्रैक्स ने फैंस को एक बार फिर से सिंग अलोंग करने का मौका दिया है। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रिस्वानी, आप सभी सुन रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अब बात करते हैं द वॉइस ऑस्ट्रेलिया विनर की। सिंगिंग रियलिटी शोज के फैन के लिए एक अपडेट है। यंग मिला, जिनका रियल नेम जो है वो लेवी निकोलोफ है, उन्होंने द वॉइस ऑस्ट्रेलिया 2026 का सीजन जीता है। वो शो के 15 सीजन हिस्ट्री में पहला रैपर जो है वो बने हैं, और पहले रैपर विनर बने हैं, और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही नोटेबल माइलस्टोन है। तो दोस्तों, ये थी भाई ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। न्यूज़ के साथ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, लेकिन सुबह सुबह अपनी कॉफ़ी को ठंडा मत होने देना, है ना, क्योंकि जब ठंडी हो जाएगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। अब वक्त है थोड़ा सा और गाना सुनने का, बिकॉज़ कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं। आइए एक साथ सुनते हैं नेक्स्ट

वेलकम बैक जी, आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेन में। सो दोस्तों, ब्रिस्बेन में रहने वाले हमारे इंडियंस कम्युनिटी के लिसनर्स के लिए भी अब इंडिया से एक इंटरनेशनल अपडेट है। 30 सितंबर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। दोनों लीडर्स ने इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एरियाज पर डिस्कशन किया है। और इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए यूएस विजिट पर है। इंटरनेशनल रिलेशंस के ये जो डिस्कशन है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और दोनों कंट्रीज के फ्यूचर कोऑपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और वैसे भी चाहे आप ब्रिस्बेन में हो, सिडनी में हो या फिर इंडिया में अपने घर पर हो, अपने देश की खबरों से कनेक्टेड रहना एक अलग ही फीलिंग देता है। तो आइए इसके साथ अब बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

नाउ इट्स टाइम फॉर फिल्मी तड़का। दोस्तों आज की बात है बॉलीवुड के उस म्यूजिक की जो जनरेशंस को कनेक्ट करता है। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पेरेंट्स के फेवरेट किशोर कुमार और लता मंगेशकर के सॉन्ग्स, दूसरी तरफ हमारे 90s के रोमांटिक नंबर्स और आज की जनरेशन के जो रील्स वाले ट्रेंडिंग ट्रैक्स है वो। म्यूजिक बदलता रहता है दोस्तों, लेकिन कुछ मेलोडीज कभी कभी, कहते हैं ना, कभी कभी क्या, कभी भी पुरानी नहीं होती है। वो एक ऐसी ट्रैक होती है, ऐसी फीलिंग्स होती है जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। इजहार इंसान कभी कभी मुंह से ना करते हुए उस गाने के थ्रू कर देता है। और मुझे लगता है कि हर फैमिली में एक ऐसा पर्सन जरूर होता है जो कहता है आजकल के गाने में वो बात नहीं है ना, और फिर खुद ही किसी नए गाने पर पैर थिरकने लगते हैं। अब ब्रिस्बेन, लेट्स सेटल अ फन क्वेश्चन। अगर आपको रोड ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या चूज करेंगे भाई? ऑप्शन वन किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के एवरग्रीन क्लासिक सॉन्ग्स, ऑप्शन टू 90s के कुमार सानू और उदित नारायण के रोमांटिक सॉन्ग, ऑप्शन थ्री लेटेस्ट बॉलीवुड पार्टी हिट्स। आपकी प्लेलिस्ट जो है वो किस थीम में है? और एक चैलेंज है आज, किसी अपने को अपना फेवरेट ऑल सॉन्ग डेडिकेट जरूर कीजिए। हो सकता है एक गाना आपको किसी ब्यूटीफुल मेमोरी तक वापस ले जाए। तो चलिए अब एक क्लासिक मूड बना ही लेते हैं सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी में।

सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 FM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आसमान में हाईजैक का डर, सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों ने गाने तालियों से मनाया जश्न। दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई के एक यात्री विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयरलाइन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनकी सही सलामत मौजूदगी की पुष्टि हो गई है। एयरलाइन ने कहा, हमारी टीमें संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जैसे ही पक्की और अधिक जानकारी मिलेगी, आगे अपडेट दी जाएगी। लंदन कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ हनी ट्रैप का मुकदमा मेहुल चौकसी ने लिया वापस। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने लंदन हाई कोर्ट में भारत सरकार और यूके में रहने वाली हंगेरियन महिला बारबरा जारबिक के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। मेहुल चौकसी ने आरोप लगाया था कि 23 मई 2021 को एंटीगुआ में हनी ट्रैप की साजिश के तहत उनका अपहरण किया गया था और हर्जाने के तौर पर करोड़ों पाउंड का दावा किया था। दो दशकों बाद इराक से अमेरिकी सेना की विदाई। इराक में पिछले दो दशकों से चला रहा अमेरिकी सैन्य दखल अब आधिकारिक तौर पर समाप्त होने जा रहा है। अमेरिकी सेना इराक में अपने आखिरी बचे सैन्य अड्डों को भी पूरी तरह खाली कर रही है। इसके साथ ही 2003 के अमेरिकी आक्रामक से शुरू हुआ सैन्य मौजूदगी का ये लंबा अध्याय हमेशा के लिए अब बंद हो गया है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। मोदी कैबिनेट ने लिए तीन बड़े फैसले। केंद्रीय कैबिनेट ने खेती, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी आवाजाही से जुड़े तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए सभी तय रबी की फसलों के लिए ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.86 लाख करोड़ रुपए की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 3 योजना और दिल्ली के लिए टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। मंगलुरु की ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद लगी आग, कई घरों की खिड़कियां टूटी, महसूस हुए भूकंप जैसे झटके। कर्नाटक के मंगलुरु में जो कटे के पास MRPL ऑयल रिफाइनरी में जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके से घर हिल गए और लोगों को झटके महसूस हुए। इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी PTI ने स्थानीय लोगों के हवाले से दी है। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। पाकिस्तान पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, जो अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना करते रहते हैं, उन्हें बोर्ड में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अख्तर कई बार क्रिकेट बोर्ड पर तीखा हमला करते हुए देखे गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के इस खराब हालात के लिए भी बोर्ड को ही जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन उन्हें अब PCB अहम भूमिका दे सकता है। जी आपको बता दें कि शोएब अख्तर को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आने का न्योता मिला था और इसीलिए अब उनकी बोर्ड में वापसी हो सकती है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता
1: जी। हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत सा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? अमिता आपको भी नमस्ते।
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन,
1: या
2: वेलकम टू थर्सडे मॉर्निंग एंड इट्स 7:05 AM।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का, जो लोग इंटरनेट से भी सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागतम। और रेडियो बिजवा

0: एक गीत सब एक गीत सब चीज ठीक है
1: yeah.
0: लेकिन वो एक लाइन जो बोलता मैं लड़की घुमा रहा था इतना मुझे अटपटा सा लगा कि आते थे शुड हैव रिटन कि मैं प्रेमी घुमा रहा था और समथिंग लाइक दैट.
1: वेल इट्स प्रोबब्ली जस्ट एम्फसाइजिंग ऑन हिज यूथ आई सपोज या मेबी आई डोंट नो इट्स जस्ट अ कैची सॉन्ग दैट
0: इट इज अ वेरी कैची सॉन्ग रियली लाइक वेरी कैची सॉन्ग आई लाइक दैट सॉन्ग.
1: Always,
0: even though I haven't fully listened to it, what it's
1: always
0: saying,
1: used to irritate my sister because my jeeja and I used to dance to the song together and annoy her.
0: Yeah. The more she gets annoyed,
1: yeah, the more we'll move.
0: The more emphasis on the
1: yeah,
0: song.
1: Yeah, I know. Okay.
0: चले दोस्तों अब देखते हैं थोड़ा कुछ न्यूज देख लेते हैं ठीक है.
1: Yes.
0: Okay. फिजी न्यूज में कह रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस राइज टुडे पेट्रोल इंक्रीजेस 5 सेंट्स टू फिजी $3.15 फिजी डॉलर अ लीटर व्हाइल डीजल राइजेस 21 सेंट्स टू फिजी डॉलर $3.41 ए 12 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर इंक्रीजेस टू फिजी $42.16. The changes took effect at midnight following the latest pricing review. Constitution change had for debate. Prime Minister Sitiveni Rabuka tabled the Constitution Amendment Bill yesterday with debate scheduled for Friday, 2nd October. It proposes retaining 55 parliamentary seats divided between constituency and party list members. Opposition MPs have challenged the procedure used to introduce it. These remain proposals, not enacted changes. New development in missing cocaine investigation. Rabuka now backs an independent inquiry and an audit of high-value court exhibits. You know, court exhibits got stolen. How good is
1: Whoa.
0: That? He says investigators must examine access, responsibility for storage, and whether surveillance system were working. Oh my goodness, what a disgrace. Wow, what a disgrace. Oh my goodness. Okay, Australia. Inflation reaches 4%. Wow. Figures released yesterday show annual inflation rose from 3.5% in July to 4% in August, driven by housing and fuel costs. However, underlying inflation held at 3.6%. The result was slightly below forecast, reducing market expectations of another November rate rise, though another increase remains possible. Another one coming up.
1: Yeah.
0: David Shoebridge elected Greens leader. Okay, you know that now, right?
1: It's yep.
0: been changed, yeah. Olympic Stadium takes another step. Besiktas Ozbek and John Holland have been selected as the sole consortium entering final contract. Negotiations for the 63,000-seat Victoria Park Stadium. Contracts are expected to be finalized in the new year, with the construction plan for 2027, right. Our WOWs, WOWs, kids.
1: Hey?
0: What is that? It says, short form for, I don't know what it is, WOWs, kids. Fiji Morning Tea yesterday had collected Fiji $3,751 in donation and pledges when reported. With the final total still pending, the charity helps families facing childhood cancer, including assistance with transport to treatment. Well, that's nice, isn't it? Okay. और दोस्तों, आज किसी की बात ध्यान से सुनिए, बिना बीच में टोके, बिना तुरंत सलाह दिए. कभी-कभी इंसान को जवाब से ज़्यादा एक सुनने वाला जो चाहिए होता है ठीक है. फोन थोड़ी देर साइड में रखिए और पूछिए आप कैसे हैं, फिर उनका जवाब सुन के सुनने के लिए वक्त भी दीजिए. ठीक है अमिता, मैं फोन रख दिया हूँ. आप कैसे हैं?
1: मैं दिल को ठीक ठाक हूँ.
0: वाह ओके. और मैंने आपके जो है ध्यान से सुना और आपने कहा मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. ओके देयर यू गो. दैट्स नाइस टू नो.
1: नाइस टू नो ऑफ कोर्स.
0: आगे बढ़ते हैं.

0: ओ मेरे दिल की चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। और ऐसे में एक रील देख रहा था जो एक स्वामी आता है ना, द हैंडसम लुकिंग स्वामी, इज क्वाइट गुड। आई लाइक हिज
1: हैंडसम लुकिंग
0: आई लाइक हिज आंसर्स यू नो। लाइक एक बुढ़ा आया, बोलता स्वामी जी मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ। ही केम विद हिज वाइफ,
1: फिर से
0: मैं शादी। बोलता अरे बाप रे बाप, इस उम्र में फिर से शादी करना चाहेंगे, क्या बात है। कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं। और परवरिश कर लेते हो सबको? हाँ हाँ हाँ, अगर शादी कर लेंगे फिर आएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ फिर से। तो बोलता क्यों? बोलता मैं घर जब आता हूँ कुछ करता हूँ तो ये हमेशा कच कच कच कच लगाती रहती है, मैं थक गया हूँ, फिर से शादी करूंगा मैं।
1: And what if the second wife does the same?
0: तो उसको बुलाया, बोलता अच्छा बीबी को दो, पत्नी को दो। पूछा क्या सच बात है? बोले क्या करूं, ये रोज पी के आता है ना, तो कचकच तो होता ही है। ओके, तो वेंट ऑन एंड देन ही टोल्ड हिम, उसे बोला अच्छा पत्नी से बोलो आई लव यू। तो बोला ना अच्छा फिर नहीं लड़ोगे ना, शराब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा, सचमुच में नहीं पीऊंगा। अच्छा अपने पत्नी के प्यार से बोला आई लव यू, बोलता आई लव यू। पत्नी को बोला अपने, अच्छा आप भी बोलो अपने हस्बैंड को आई लव यू राइट। समझे क्या है? दोनों बोलते हमको नहीं पता ही क्या है आई लव यू।
1: चीज
0: सोच रहे थे कोई किसी तरह का कसम खा रहे।
1: That is so funny.
0: Oh yeah, I laughed my head off. Oh, it was fun.

0: What a nice song.
1: Thank you.
0: वैसे मैं एक गाना मैंने सोच लिया है, सोचा हूँ, और ना दिस इज अ वेरी ओल्ड सॉन्ग जो हमारा यंग जनरेशन मालूम नहीं लाइक करेंगे कि नहीं लाइक करेंगे, लेकिन चलो बजा देता हूँ, ठीक है? ओके I don't know why everything started playing here. Hold on.

0: जी हाँ दोस्तों, फिल्म स्कूल मास्टर 1959 का एक मूवी, शकीला एंड करण, लता जी और तलत से आप इस गीत को सुना। रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान, और इस समय बस 8 बजने वाला है दोस्तों, एक ही मिनट बचा है 8 बजने में, और हम रहेंगे आपके साथ 9 बजे तक, और फिर उसके बाद मैं सताक्षी आपके साथ, ठीक है, और फिर संदेश है 11 बजे से पंजाबी प्रोग्राम, 3 बजे से निविया है, और कल नीलम रहेगी, ठीक है, तो संध्या मोनी को परमा भाई रहेगा, तो इस तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा कार्यक्रम। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं, और अमिता, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आर यू प्लेइंग नेक्स्ट?
1: नो, जस्ट गोना से एज ऑफ टुडे,
0: या
1: यू कांट बी चार्ज्ड लाइक एनी एक्स्ट्रा ऑन योर क्रेडिट कार्ड्स, सो remember they said they're going to take away that extra surcharge. You know, we pay a surcharge when we use a card, a credit card or debit card, when we're saying buying anything. So now,
0: why do they can't do that. Why do they?
1: They're removing that.
0: But why did they charge us? What for?
1: Because
0: we're going to be paying interest to whoever charges, right?
1: Listen to me.
0: Yeah.
1: The business, right, also pays a fee for having that credit card facility.
0: Yes.
1: So what they do is they try to add it onto your cost, so that it covers the other fees they are paying to the bank to have that facility. But now that they've removed it, that they can't charge you, the customer, they're going to have to bear it themselves.
0: Sure.
1: So the bank, either way, the bank is still laughing all the way.
0: Wait, to the bank?
1: Not to the bank. The bank is laughing.
0: What would you say if a bank is laughing all the way to the bank?
1: Kamine. What else am I going to say?
0: Is that all you know, Kamine?
1: No. What do you mean that? That's all I know. You said, what would I say?
0: Sabka kuch na kuch favorite words hote hai na? Favorite gali.
1: Well, they make.
0: Kabhi kabhi log pyar se bhi gali dete hai, you know that?
1: Yeah.
0: Ab jab dulhan ko lene jaate hai. तो वहाँ गाली तो खाना पड़ता ना, यू नो दैट, विदाई के समय देयर इज अ वीडियो दैट कम्स आउट, अ रील, एंड दिस गाय रियली कैन डू द जॉब, ही इज सो फनी एंड ही डज इट, ही टेक्स द पंडित एंड एवरीबॉडी,
1: रियली,
0: या इट्स अ, इट्स ब्यूटीफुल,
1: फाइंड दैट एंड शेयर इट विद मी, बिकॉज़ इट सीम्स लाइक इट्स रियली फनी,
0: इट इज फनी, व्हाई नॉट, यू गॉट टू हैव सम फन।
1: I saw something funny, like, you know how the bride cries and cries and cries when they have to leave. So the groom just shoves her back and says, okay, you know what? That's it, stay. You're crying so much, stay.
0: Right, yeah, stay. And, if you're not happy,
1: and then she turns around and looks at him all shocked.
0: आजकल के जमाने में तो बहुत रोना नहीं चाहिए, पहले के जमाने में
1: तो, ओके,
0: बिकॉज़ यू नेवर सी देम अगेन,
1: यू डोंट नो व्हेन नेक्स्ट यू गोना सी योर फैमिली,
0: आज के जमाने में तो,
1: वेल राइट नाउ दे लिविंग टुगेदर बिफोर दे गेट मैरिड एनीवे,
0: सो व्हाई यू क्राइंग फॉर,
1: या नो दे डोंट क्राई, दे डोंट क्राई, नो नो, नोबडी क्राइज नाउडेज, इट्स फनी हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, eh,
0: मे बी दे क्राइंग बिकॉज़ नाउ दे लॉस्ट द फ्रीडम, इफ दे डू क्राई,
1: I don't think they cry.
0: No, they don't cry.
1: Mm-hmm.
0: I mean, look, I can see the sense in it in those days when you, I mean, I don't have a daughter, but I can imagine if I had a daughter, it would have been very hard to say.
1: Of course it is. Because, I mean, like you bring up this little
0: crying,
1: human being.
0: Yeah, they're probably crying, ki sab paisa laga kar, pass, pol kar, pass kar, itna bada kar diya. अब आप लेकर जा रहे हैं?
1: नो नो, आई डोंट थिंक दैट्स व्हाई पेरेंट्स क्राई, आई
0: एम जस्ट किडिंग,
1: पेरेंट्स डोंट नो हाउ दैट मैन इज गोना टेक केयर ऑफ दैट प्राइड एंड जॉय, देयर लिटिल प्रिंसेस,
0: वेल वी फेल्ट इट व्हेन आवर सिस्टर्स वर गोइंग,
1: दैट्स व्हाई पेरेंट्स क्राई, बिकॉज़ यू डू योर अटमोस्ट टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड एंड प्रोटेक्ट दिस चाइल्ड, एंड नाउ दैट चाइल्ड इज गोना गो टू समबडी एल्सस होम एंड यू डोंट नो व्हाट दे गोइंग टू फेस,
0: Well, not only protecting and bringing them up, it's just a child is going in another house.
1: Yeah.
0: Yeah, I know what you're saying. It is that too. A lot of reasons.
1: Aapka
0: ek child is going away to some, to, you know. Achha, aajkal aisa to nahi hota. Pehle zamane mein to you didn't know saans kitni kadi hai.
1: Yeah, whatever.
0: Aur kya sataegi, kya karegi. Pehle zamane mein karte the, saans bhi bade pakke the. Aur... बहुत नहीं कुछ बोलती थी उन दिनों ना अब तो थोड़ा डिफरेंट हो गया है टिट फॉर टैट है
1: टिट फॉर टैट
0: वो दिन गया जब सास कढ़ाई में रखते थे वो जमाना चल गया था इट वाज ओके वाजंट ओके बट इट वाज अ नॉर्म दे यूज्ड टू डू दैट
1: बट आई वंडर व्हाई वर दे सो लाइक टफ
0: अपने तो अपने होते हैं ना
1: बट व्हाई आई मीन दैट्स नॉट फेयर दैट्स समबडीज डॉटर लाइक यू नो And one would think that you would treat them as your own daughter, you know.
0: But I know some places where the SARS did no favoritism with the daughters. I won't say where, but I've seen that. Everybody had equal duties to do. One day, one couple, two ladies will cook. Two will wash, and then they alternate. There was no room for favoritism, nothing. And that's, it all because of the SARS. SARS was very fair. She was very nice. You know? So, aisa bhi hota tha. Nahi ki always one-sided nahi hua karta tha. Or, I mean, SARS also has to understand that she's coming from another home. And now she has
1: and
0: to adapt your style, your way of...
1: The SARS has to remember one day she was a daughter-in-law too.
0: Yeah. So give and take hota thoda unse seekh lo, unka ghar ka ravaiya kya tha, aur phir apna bhi thoda sikha do. Hai ki nahi? Aise chalna chahiye, kya karenge? Khair, chalo. Aage badhte hain, dosto. Radio Bizwani sun rahe hain. Aur aage kya hai?

0: उसे दिल में समा, आ जा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आ जा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: वाह, ओके, बहुत बहुत ही प्यारा गीत था, आ जा रे आ जरा आ। ओके, अगला जो गीत है, ये गीत मैंने जब सुना था तो मुझे ये सीन आज तक मैंने नहीं भूला।

क्योंकि ये जो गाना है व्हाट्स हैपनिंग हियर, ये जो गाना है, ये गाना व्हाई इज इट इट्स गॉन लो आई थिंक इजंट इट, होल्ड ऑन ओके समथिंग इज नॉट राइट हियर एनीवे ओके हियर वी गो. ये गाना जो है ये मैंने जब सुना था तो उस समय मैं शायद बहुत बहुत यंग था और मुझे वो सीन अभी तक याद है जब ये गाना वो गा रहे थे क्या बोलते हैं उसमें टेलीफोन पर ओके कौन सा गीत था ये गीत शायद आपको भी याद होगा. जी हाँ नूतन और सुनील दत्त के लिए.

హలో 9 8 2 1 0 2 6 2 1 2 BPL. అరే 9 8 2 0 0 2 6 2 3 5 Max Touch.

0: और हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर है 04-3003-1701.
1: You had to quickly put that in, didn't you?
0: Yeah.
1: Just in case anyone's trying to get hold of you and I'm answering that call.
0: चलिए एक रिक्वेस्ट है प्रेम जी, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट. चलो सुनते हैं इस गीत को.

0: और दोस्तों, इस गीत का शायद यही मतलब है कि जब जिंदगी में सच्चा प्यार आता है ना, तो दिल भी फूल की तरह खिल जाता है। बहुत प्यारा सा गीत, और इस गीत को लता और साथ में सुरेश वडगा ने गाया था, और संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संतोष आनंद ने लिखा था। ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। और चलिए, एक खबर है यहाँ पर। शानून भाई, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी शानून, इन दोनों के 39 वेडिंग एनिवर्सरी ऑन द 3rd।
1: ओह, हैप्पी एनिवर्सरी। ओह, दैट्स सैटरडे। ओह, देयर इज गोना बी अ बिग पार्टी।
0: वेल, कांग्रेचुलेशंस शानून एंड अश्विन। बहुत ही, you know, Shanun has he's a radio fan. He's the one that called from
1: while he was traveling. Yes. Oh.
0: Well, I really owe it to Shanun. Wow. He helped me a lot with the radio when we started. You know that, I think I told you. What a great help. Thank you, Shanun bhai.
1: Well, happy anniversary.
0: Happy anniversary.
1: Wishing you all the best in many, many, many years of love and togetherness.
0: I'm just thinking.
1: What?
0: He's got a long way to catch up. They have a long way to catch up. Ooh, enjoy your wedding, wedded life, bro. Okay? All right. चले आगे बढ़ते हैं, और बहुत सा प्यारा गीत है जो मैं जानता हूँ इनको बहुत पसंद है गीत, और उम्मीद है दोस्तों आप भी पसंद करेंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, इस गीत के साथ बस 20 मिनट रह गए हैं 9 बजने में.
1: ओह वाओ,
0: या
1: व्हेन डिड द टाइम गो टुडे?
0: ओके, वी वर एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, वी
1: वर लिसनिंग, वाओ,
0: द पीपल वर रिक्वेस्टिंग. आई थिंक इट मेड आवर वर्क मच मोर एंजॉयबल, डोंट यू थिंक सो? इट गोज टू शो, यू नो, इट बिकम्स सो नाइस व्हेन पीपल डू रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट किया करो दोस्तों. ओके, व्हाट एल्स इज लॉट ऑफ दिस थिंग इज कमिंग, है दिस भजन जैमिंग एंड ऑल दैट कम्स अप.
1: या
0: ओके, व्हाट आर यू प्लेइंग?
1: ओह, वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड अल्का'स फेवरेट्स.
0: ओके,
1: ऑल्दो शी इज नॉट लिसनिंग, आई नो शी इज एट वर्क, बट आई प्ले इट नॉनदलेस.
0: This is one of my favorite, Mitchie Dunn.
1: Is it?
0: Yeah.

0: गाना बहुत जुलूम अमिता, एकदम बेहाल रहा.
1: Just because we started with that on Monday, you're rounding up the week. how clever.
0: Yeah.
1: Very, very
0: that
1: clever.
0: That came from UP, okay?
1: Yeah.
0: All the language. अगर आप नहीं जानते हैं, दिल्ली के लोग नहीं जानते हैं. अच्छा, एक जो गाना है ये कंप्यूटर में था, उसको वहां से हटाया तो ये दूसरा कंप्यूटर में आ गया.
1: Okay.
0: तो लगता है कि मुझे बजाना ही पड़ेगा.
1: Right.
0: मैंने कभी नहीं सुना है. आप भी नहीं सुने होंगे शायद, तो चलो सुन लेते हैं दोस्तों.

0: तो जब मन भारी हो जाए सीताराम गाइए, जब कुछ ना समझ में आए तो सीताराम गाइए। बड़ा सुंदर सा भजन था ये। देखो पीछे नहीं छोड़ रहा था, मैंने बोला चलो बजा ही देता हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा दोस्तों। ठीक है, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, और चलो अगला गीत। आर यू प्लेइंग समथिंग?
1: You put me in the mood.
0: Yeah, oh, I put you in the mood, so you're gonna.
1: But yeah. I'm gonna play something very new.
0: Okay.
1: From the new movie that's coming out, Ramayan.
0: Oh yeah, I was just gonna play one of them, but anyway,
1: play. I'll play this one, all right, if you don't mind, because I'm now in that zone.
0: All right, I've fully.

0: और दोस्तों अब यहाँ से जाने का वक्त हो गया है प्रोग्राम से, और आप सभी ने प्रोग्राम सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ भी फीडबैक दिए हैं आप, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए यहाँ से जो आखिरी गीत है आप सभी के लिए,
1: यस वी वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड।
0: यस, और कल नीलम के साथ
1: जी
0: भूलना मत, और फिर शनिवार को परमा भाई के साथ आप हो जाएंगे, ठीक है? तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। चले निकलते हैं इस गीत के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
2: न जाओ छोड़ कर

मॉर्निंग है जी, कैसे हैं? बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, देखिए हमारी दुआ हमेशा यही होती है कि हर वो सुबह जो हमें आपसे मिलवाती है वो आपकी ज़िंदगी की बेस्ट सुबह हो, हर आने वाला दिन आपकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन हो और आपकी ज़िंदगी पूरे दिन खुशियों से महकती रहे। और ये दुआ अगर कबूल होती है तो यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी ही खुशियों से भर जाएगी। और इसी ज़िंदगी के सफ़र पर एक बार फिर से अपना साथ लिए मैं सताक्षी आ गई हूँ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। जी हाँ दोस्तों, ये है साथ मेरा आपके साथ इट हैपन्स में। और इस साथ के साथ आज हम फिर से अपने दिन की, अपनी जर्नी की आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड आई रियली विश कि आप भी इस सफ़र पर मेरे साथ चलने के लिए बिल्कुल ताज़ा तरीन तरीके से तैयार होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी के, हमारी जर्नी के एक और सफ़र पर। मैं हूँ सताक्षी आपके साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपन्स। और ये अगला ट्रैक आपके लिए, इसके उस पार होंगी आपके साथ और भी बेहतरीन बात।

एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एएम पर सताक्षी के साथ इट हैपेंस में। आज हम फिर से कर रहे हैं आपके साथ जिंदगी की कुछ खूबसूरत बातें, लेकिन इन बातों की सही शुरुआत के पहले हम विश करेंगे उन्हें जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास। सो जिनका भी आज है हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हम विश करते हैं कि आपको जिंदगी की हर चाय ख्वाहिश मिले और आप जिंदगी का जो भी कदम उठाएं आपको सक्सेस दे, प्रॉस्पेरिटी दे और ढेर सारी लोगों की नजर में इज्जत दे। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जिंदगी के सफर पे एक दूसरे का हाथ थामे हुए यूं ही चलते रहें और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग कैसे हैं, क्या हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बस आप एक दूसरे का साथ निभा पाएं। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन, सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रीचू बिस्वानी 1701 एम पर, और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। तो चलिए आज इट हैपेंस में हम बात करते हैं आपके आसपास रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जी हाँ, कुछ लोग हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में ऐसे जरूर होते हैं जो अपने आप को समझते हैं सुपीरियर, और इनको लगता है कि ये जब चाहें हमें नीचे दिखा सकते हैं, ये जब चाहें हमारे इमोशंस को यूज कर सकते हैं, और हम इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं पर्सनली इमोशनली। हम समझ नहीं पाते कि हम इनको कैसे हैंडल करें। तो ये याद रखिए कि इनसे इफेक्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ खुद को सुपीरियर समझते हैं। ये अपने आसपास जो इनका माहौल है ना, या इनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ये उससे ना तो सेटिस्फाई होते हैं और ना ही खुश होते हैं। इन्होंने अपने ईगो को ही सबसे ऊपर रखा है, पर चाहे वो रिश्ते हो या इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ये हमेशा अपनी कमियों को दूसरों पर थोपते हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ये बहुत पावरफुल है, या ये बंदा जो है ये बहुत कुछ जानता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसा शो करते हैं, बल्कि ये खुद अंदर से बहुत ही खोखले हैं। इसलिए इनको जो आप भाव देते हैं ना बिना मतलब का, सबसे पहले वो भाव देना बंद कर दीजिए, वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दीजिए। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। इट हैपेंस में स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ आपका अपना ये ब्रेकफास्ट शो।

रेडियो प्रस्तानी 1701 AM पर दोस्तों आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, जिसमें हमेशा की तरह आज भी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें आपसे कर रहे हैं। आपके इस सफर में, इस खूबसूरत मॉर्निंग सफर में हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपको बताएं, आपको कैसा इंसान डिजर्व करता है? जी हाँ, खुद को कम मत समझिए, हमेशा ये मत सोचिए कि हम किसे डिजर्व करते हैं। भाई आपको भी तो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि एक जो बंदा जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं या जो आपकी दोस्ती के लायक है, वो बंदा होना चाहिए ना, आपकी अपनी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। तो आपको एक ऐसा इंसान डिजर्व करता है जिसके पास अगर आप हैं तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास क्या है। यानी कि वो हर बात में आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे, उसे ये एहसास हो कि अगर आप उसके पास हैं तो शायद वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। उसको मोटिवेशन जो है वो आपसे मिलेगा, वो जो एक हर जगह उसके लिए स्टैंड लेने वाला इंसान होता है वो उसके पास है, इमोशनली उसे सपोर्ट करने वाला इंसान उसके पास है, तो उसके पास लाइफ में बहुत कुछ है। तो जनाब, अगर कोई आपको छोड़ कर गया है तो आपको उस बंदे को बस ये कह के याद करना है कि इस बंदे को मेरी वैल्यू थी ही नहीं, और जिसे आपकी वैल्यू नहीं थी उसके साथ रहना, ये तो खुद के साथ ही अन्याय हुआ ना। तो चलिए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ, जी हाँ, इट हैपेंस।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
2: Hi guys, I'm Madhvi for the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
8: से. To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
10: इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिसवानी 1701 एम पर. दोस्तों आपके साथ इट हैपेंस के सफर में सताक्षी है, और अभी वो वक्त है जहां तीन बैक टू बैक ट्रैक्स निभाते हैं हमारा साथ. आज भी तीन बैक टू बैक गानों के साथ सताक्षी आपके साथ है. तो चलिए आज देखते हैं गानों की हैट्रिक में. जी हाँ, गानों की हैट्रिक में आज का पहला ट्रैक कौन सा है?

गानों की हैट्रिक एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। इसके पहले है कि हम अपने छापन्स के सफर में आगे जाकर कुछ और बातें आपके साथ करें, गानों की हैट्रिक के दूसरे ट्रैक को आइए एंजॉय करते हैं।

वेलकम बैक, रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप और सुन रहे हैं गानों की हैट्रिक मेरे साथ। गानों की हैट्रिक का ही लास्ट ट्रैक, स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, सुनते रहिए मेरे साथ। इट हैपेंस।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: झुमका।
1: वेलकम बैक इट हैपेंस के इस बेहतरीन और खास सफर में एक बार फिर से दोस्तों आप हैं सताक्षी के साथ और मेरे साथ आप सुन रहे हैं ये जो बेहतरीन सफर है हमारा और आपका। और इस बेहतरीन सफर पर आज एक बार फिर से कुछ खास और खूबसूरत बातें। देखिए, बातें तो आपसे वैसे सब करते हैं, मतलब आप जिस भी चैनल को ट्यून इन कर लें या अगर आप कुछ लोगों के साथ भी बैठ जाएं तो वो भी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन बात ये भी है ना कि हमें किसकी बातें अच्छी लगती हैं, हम किसकी बातों से इंस्पायर होते हैं, हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कौन है जिसके साथ बैठकर हमें ये लगता है कि यार ये बंदा जो है ये हमें समझता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जानना और समझना कि कौन सा ऐसा बंदा है जो हमें समझता है और कौन सा ऐसा बंदा है जिसके साथ अगर हम बात करें तो हमें अच्छा लगेगा। और क्या जो लाइफ लेसन है ये जो हमें बता रहा है, ये समझा रहा है, ये वाकई हमारे बेनिफिट के लिए है या नहीं, है ना। तो जिंदगी में जब भी किसी के साथ बात करें या किसी की बातें सुनें तो ये सबसे पहले जरूर देखें कि वो आपसे दूसरों को लेकर गॉसिप कर रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर रहा है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ आगे बढ़े। हाँ, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस और बने रहिए रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर।

हे जो मिसानी पर दोस्तों आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, और इस इट हैपेंस के खूबसूरत सफर में हमारी और आपकी जो जर्नी है प्यार भरी खूबसूरत सी जर्नी, इस पर ढेर सारी बातें हमारी हर रोज होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन जो मील है सुबह का उसके बिना कोई भी बात इट हैपेंस की खासकर अधूरी है। बिकॉज इट हैपेंस जब हमने शुरू किया था, इनफैक्ट टीम ने मुझे ये कहा था कि आप जैसा शो लेकर जाना चाहें आप ऑन एयर